0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খণ্ডেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र,

0: सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रूपये जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हार्वर के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. माय भारत वॉलंटियर्स, माय भारत नेशनल सर्विस स्कीम वॉलंटियर्स, यूथ क्लब्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एनजीओस, यूथ विंग्स ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड मोर देन 125 पार्टनर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस विल ऑल्सो ज्वाइन द प्रोग्राम वर्चुअली. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasised that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
1: Swami Vivekanand ji, युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे. उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है. भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है. आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से.
2: The Union Government has released 1,09,019 crore rupees to state governments as an additional installment of tax devolution over and above the regular monthly transfer schedule for August 10. In a statement, the Finance Ministry said, the additional installment is intended to give states more room to speed up capital and development spending. The states include Uttar Pradesh, which received the largest share at 19,208 crore rupees, followed by Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Sikkim, Goa and Nagaland. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has reviewed the preparedness for the National Eligibility cum Entrance Test for Postgraduate NEET PG 2026 to ensure the smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on the 30th of this month. During the meeting, the minister assessed the preparedness of the National Board of Examinations in Medical Sciences, NBEMS, technology partners and other stakeholders involved in conducting the exam. The minister stressed that every effort must be made to ensure a fair, transparent and candidate-friendly examination while upholding the highest standards of integrity and security. Mr. Nadda also urged aspirants not to fall prey to rumours and rely only on official communication issued by NBEMS and the Ministry of Health and Family Welfare. US President Donald Trump has threatened to intensify military action against Iran, warning that American strikes will continue until Tehran halts attacks on shipping and returns to negotiations. The US State Department has issued a fresh security advisory urging Americans in the West Asia to consider leaving the region or be prepared to depart if the conflict worsens. The renewed tensions also spilled into Gaza and Lebanon, with Israel carrying out fresh strikes despite Hamas announcing it was prepared to disarm under a US-backed ceasefire framework. Meanwhile, Iran has warned that it is ready to strike key Israeli infrastructure and American energy facilities across West Asia if it comes under attack. And India climbed to fourth place in the Commonwealth Games medal standings in Glasgow with a total of 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze. The latest came from 5,000 metre race where India's Gulveer Singh bagged the bronze. And that is the end of this news bulletin.
3: অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 290.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 1026 কিলোহাৰ্জত। অনুষ্ঠান পৰিচিতি

0: शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के

0: सात दौड़ों की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण, जबकि शुभम जोयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स

0: टीम ने तीन और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाई। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं। डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च नेशन वाइड कैंपेन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान टुडे। Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
4: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, हम सभी के प्रिय, हम सभी के आदरणीय। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये प्रेरणा दी कि हम अब्दुल कलाम जी के व्यक्तित्व को, उनके दर्शन को और देश के प्रति उनके योगदान को जाने, समझे और उसके महत्व को भी पहचाने और साथ ही ये भी जाने कि किसी एक साधारण से परिवार में जन्मे किसी बच्चे की यात्रा रामेश्वरम से जब राष्ट्रपति भवन तक होती है तो बीच के क्या पड़ाव होते हैं और जीवन किस तरह से उनके सामने धीरे धीरे खुलता है। तो आइए सबसे पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवाती हूँ। आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री अनुज सिन्हा जी को। आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के। आप एडवाइजर भी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
3: नमस्कार, थैंक यू।
2: हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नकुल पराशर। अप्लाइड फिजिक्स में आपने PhD की है, आप ऑथर भी हैं, विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड रहे हैं आप और साथ ही विज्ञान प्रसार के निदेशक भी रहे हैं। नकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
4: धन्यवाद, नमस्कार।
2: डॉक्टर रश्मि हमारे साथ हैं, आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं। कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी है, कलाम तुम लौट आओ पुस्तक आपने लिखी है, कलाम इंस्पायर्स आपकी रचना है। और एक बेहद खास बात ये है कि डॉक्टर रश्मि ने जब कलाम साहब की आत्मकथा लिखी तब उनका ही मार्गदर्शन रश्मि जी को प्राप्त हुआ। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो साथियों, इससे पहले कि मैं अपने सवालों की बौछार अपने विशेषज्ञों पर करूं और अपने विशेषज्ञों के माध्यम से हम कलाम साहब को और जाने, आइए मैं आपको सुनवाती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो उद्गार, मन की बात का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उल्लेख किया है।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ।
2: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द और उन्होंने एक और प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, बेहद सम्मान से जिनका नाम लिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम अपने विशेषज्ञों से ये सवाल करते हैं। अनुज सिन्हा जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि हम जब APJ अब्दुल कलाम जी का नाम लेते हैं तो बहुत सम्मान मन में आता है। हम उन्हें अपने पूर्व राष्ट्रपति जी के रूप में याद रखें, हम उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में याद रखें, हम उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद रखें, या उनके व्यक्तित्व के ऐसे भी और कई पहलू हैं जो हम सबको जानने चाहिए।
3: बहुत सही बात है, डॉक्टर कलाम जो हैं वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं
2: जी।
3: उनकी शुरुआती जो लाइफ थी बड़ी कठिन थी
2: जी,
3: और उसके बाद

0: लेकिन इनके पास जो वैल्यू सिस्टम्स आए उनके फैमिली के रिलेशन की वजह से वो ऐसे थे कि आज भी मेरा ख्याल उनका बहुत इम्पोर्टेंस है. और वो जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उसकी वजह से वो पहले स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने अपना सिक्का जमाया
1: जी.
0: उसके बाद डिफेंस प्रोग्राम में अपना हुनर दिखाया और उसके बाद वो और कई चीजों में रहे, परंतु लार्जली जो उनका राष्ट्रपति पद पे जो रहे 5 वर्ष उसमें जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा, उसके बाद भी वो विद्यार्थियों के साथ टीचर्स के साथ जुड़े रहे. और उनका कहना था कि मैं इन बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ
1: जी.
0: उनको एक मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा लगता था जब वो बच्चों से बात करते थे और ये सब मिला जुला के जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो एक मेरा ख्याल है कि बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी. उनमें हल्का सा भी अहंकार नहीं था. वो चाहे राष्ट्रपति रहे हों या जब वो चीफ रहे हों, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे हों या डिफेंस के साइंटिस्ट रहे, डायरेक्टर जनरल, वो उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था. जब बात करते थे वो समझने की कोशिश करते थे हम लोग क्या बोल रहे हैं या कोई और क्या बोल रहा है, और समझने की कोशिश करते थे, सीखते थे और उससे फिर आगे बढ़ते थे
1: जी.
0: तो ये एक उनकी बहुत अच्छी मेरे ख्याल है कि क्वालिटी थी
1: जी.
2: जी
1: तो ये हमें याद रखनी चाहिए जी. डॉक्टर नकुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर कलाम का मानना था कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि समाज तक पहुंचना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
2: नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि जैसा भी सिन्हा साहब ने कहा कि कलाम साहब एक पीपल्स प्रेसिडेंट थे, लोगों से जुड़े हुए थे और शुरुआती की दौर से अपने जीवन की शुरुआत से उन्होंने विज्ञान पढ़ा, विज्ञान के प्रति उनकी लालसा रही और खासकर विज्ञान को आम जनमानस तक पहुंचाने की उन्होंने बहुत चेष्टा करी और इसीलिए वो हर तरह से, ताकि विज्ञान ऐसा ना लगे कि वो लैब में कुछ अजीब सा कुछ चल रहा है जो लोगों तक ना पहुंच पाए, तो इसलिए उसको सबसे पहले उन्होंने उस बात को समझा, उस बात को खुद आत्मसात किया था, बचपन में देखा कि किस तरह से विज्ञान जो है बहुत जरूरी है हम सबके लिए, तो बच्चों के बीच में गए, बच्चों से मिलना शुरू किया. मुझे अच्छे से याद है कि 14 मई 2003 में जब वो राष्ट्रपति थे तो उनके पास स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर्स आए, तो उन्होंने उनके साथ बैठ के अपने वो सारे अनुभव साझा किए. तो आप जब आर्काइव्स में उनके देखते हैं तो ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिलते हैं जहां वो विज्ञान को आम आदमी तक, आम आदमी के समझने लायक बनाने की पूरी उन्होंने पुरजोर कोशिश की और पुरजोर उसकी वकालत करी और वो वकालत उन्होंने अपने जितने भी एक्शंस थे उनके जरिए लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करी. तो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने बताया 14 मई 2003 का उनका ये जो स्पीच आर्काइव से मिलता है उसमें उन्होंने कैसे बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो कैसे लोगों ने उनको प्रभावित किया और कैसे जीवन में उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो कुरीतियां हैं, जो चीजें हैं उनके समझ में लगती थी, उनको उन्होंने विज्ञान के जरिए उसको दूर भगाने की चेष्टा करी, लोगों के अंदर उसका प्रसार किया. तो उनका ये शुरू से खुद ये रहा कि पहले खुद करके देखूं और उसको अनुभव करूं और तब लोगों तक पहुंचाऊं. तो ये काम जो विज्ञान संचारक या प्रचारक होता है उसका ये एक बहुत बड़ा गुण है और इसको उन्होंने बखूबी करके दिखाया
1: जी. यहाँ मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना जानना
2: चाहूंगा. बिल्कुल, जरूर जरूर. और चूंकि कलाम साहब शुरू से हमारे डिफेंस में, हमारे जितने फौजों के लिए काम करते थे, तो मुझे हमेशा से उनका ये जज्बा बहुत अच्छा लगता था. और लक्ष्य फिल्म का एक गाना है, कंधों से मिलते हैं कंधे, मेरे ख्याल से बहुत सामयिक रहेगा, बहुत प्रासंगिक रहेगा
1: जी. बिल्कुल, हम यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं.

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं सभी के प्रिय और सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। आप सर्वोच्च संवैधानिक पद पर तो आसीन रहे ही, भारत के आप राष्ट्रपति रहे, लेकिन साथ ही आप छोटे छोटे विद्यार्थियों के दिलों में भी बसे रहे, और यही सबसे बड़ी खास बात है जो उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट बनाती है। आज हम कलाम साहब के बारे में बात कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ हैं अनुज सिन्हा जी, आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और साथ ही आप पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के। हमारे साथ डॉक्टर नकुल पराशर हैं, आप भी पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के और साथ ही आप ऑथर भी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि हैं, आपने कलाम साहब की आत्मकथा लिखी है और भी अपनी रचनाएं आपने कलाम साहब को समर्पित की हैं, लेखिका हैं आप। तो रश्मि

0: जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि पुस्तकें तो कलाम साहब पर बहुत लोगों ने लिखी हैं और गर्व भी महसूस करते हैं वो कि उनकी जो एक रचना है वो कलाम साहब के नाम हुई, उनकी लेखनी ने ये सौभाग्य पाया। लेकिन आपके साथ खासियत ये है कि जब आपने अपनी पुस्तक लिखी तो स्वयं कलाम साहब का मार्गदर्शन आपको मिला। मैं चाहूंगी कि आप अपना ये अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें। कैसा लगा आपको जब पहली बार आप उनके पास गईं, उनसे मिली, और क्या फिर प्रक्रिया रही आगे बातचीत की?
1: मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं डॉक्टर कलाम साहब से, मैं दरअसल उनसे 3 बार मिली
0: जी,
1: तो जब मैंने ये विचार किया कि मैं उन पर पुस्तक लिखूं, तो मैं डॉक्टर कलाम साहब से मिली और मैंने उनसे कहा कि सर मैं आप पर एक पुस्तक लिखना चाहती हूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ऊपर तो बहुत किताबें हैं, बहुतों ने लिखा है, अब आप क्या लिखेंगी? तो मैंने कहा कि मैं आप पर उपन्यास लिखना चाहती हूँ, एक जीवनी परक उपन्यास। तो हंसते हुए बोले कि अब तो मुझे हीरो बनाओगी। तो मैंने कहा सर आप हीरो हैं, मैं आपको हीरो क्या बनाऊंगी। मैं तो बल्कि जब अपने युवाओं से, बच्चों से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि बेटा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, और जब वो मुझे किसी हॉलीवुड के स्टार का या हॉलीवुड के स्टार का नाम लेते हैं तो मेरे मन में बड़ी इच्छा होती है कि वो ये क्यों नहीं कहते कि डॉक्टर कलाम मेरे हीरो हैं, विवेकानंद मेरे हीरो हैं, भगत सिंह मेरे हीरो हैं। तो सर वो हंसने लगे, बिल्कुल बच्चों की तरह खिलखिला के हंसे। और आप यकीन मानिए मैं सोच के गई थी कि मैं देश के इतने बड़े भूतपूर्व राष्ट्रपति से मिल रही हूँ, भारत रत्न से मिल रही हूँ, मैं इतने बड़े प्रौद्योगिकी के और अपने वैज्ञानिक से मिल रही हूँ जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दिया। लेकिन जब मैं उनके सामने बैठी थी तो मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग के सामने बैठी थी, ऐसा लग रहा था। इतने विनम्र, हंसता हुआ चेहरा। आज जब मैं डॉक्टर कलाम को याद करती हूँ तो मैं उन्हें किसी पद से याद नहीं कर पाती। कभी मेरे सामने उनका वो चेहरा नहीं आता, ना राष्ट्रपति वाला, ना बस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक सौम्य सादगी से भरा चेहरा, एक ऐसे व्यक्ति जो कभी भी आपसे मुलाकात में अपनी उपलब्धियां नहीं बताएंगे, कभी भी अपने बारे में नहीं बताएंगे। वो हमेशा ये पूछेंगे कि देश में क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा, युवाओं में कैसे देश के प्रति संस्कार पैदा होंगे। उनका 2020 विजन इसी को समर्पित था, जिन्होंने अंतिम सांस तक जिस पर उन्होंने काम किया। तो मैं डॉक्टर कलाम को इस तरह से देखती हूँ, यहीं से बस इतनी प्रेरणा गहरी होती चली गई कि अब मुझे एक ऐसा उपन्यास देना है ताकि ये हमारी युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाए, हमारे बच्चों को एक सपना दिखाए, और यहीं से यात्रा शुरू हो गई
0: जी। तो जब आपकी पुस्तक लिखी जा चुकी थी उसके बाद का क्या अनुभव था, ये कलाम साहब के हाथों में पहुंची?
1: हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जब ये पुस्तक शुरू की थी तो कलाम साहब के आशीर्वाद से शुरू की थी
0: जी।
1: उन्होंने मुझे कुछ चीजें भी सुझाई थी, वो सब मैंने डाली, यहाँ तक कि उनके हाथों में लॉन्च भी करवाना चाहती थी। लेकिन जब किताब का अंतिम रूप आया तब वो दुनिया से दैहिक रूप से जा चुके थे। ये मेरे लिए बहुत दुख का समय था। तो अगर आप इस उपन्यास को उठाएंगे तो उसकी जो पहली पांडुलिपि थी उसमें प्रारंभ और अंत थोड़ा अलग था, बाद में मुझे उसका अंत अलग करना पड़ा क्योंकि तब वो जा चुके थे। जब मैं ये पुस्तक पूरी कर रही थी तो मैं पूरी प्रेरणा से पूरी कर रही थी, लेकिन जब डॉक्टर कलाम दैहिक रूप से चले गए तो मैं बहुत उदास थी, निराश थी। लेकिन मेरे मित्रों ने, मेरे परिवार ने, मेरे प्रकाशक ने, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि नहीं रश्मि, इस पुस्तक को पूरा करेंगे, ये उनकी श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति आपकी। तो ये पुस्तक पूरी हुई, फिर डॉक्टर एसएम खान साहब ने इसको लॉन्च किया और इस तरह से ये फिर पुस्तक आई।
0: तो अपनी पसंद का कौन सा गाना इस समय कलाम साहब को याद करते हुए आप हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगी?
1: मैं सुनाना चाहूंगी आशाएं आशाएं जी, करने की हो आस आस, क्योंकि ये डॉक्टर कलाम के तो पूरा जीवन इसी में ही है
0: जी। तो बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है, हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज का हमारा ये कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, हमारे ऐसे भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऐसे भारत रत्न जो हर दिल में बसते हैं, और उनके जीवन से जुड़े ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, जब जब हम उनके बारे में जानते हैं एक नई प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, अनुज सिन्हा जी हैं, डॉक्टर नकुल पराशर हैं, डॉक्टर रश्मि हैं। मैं अनुज जी अब आपसे जानना चाहूंगी, हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, ऐसे में हम उस समय की भी जरूर बात करें जब उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था। आप उस दौर को कैसे याद करते हैं, क्या उस तरह चुनौतियां रही थी उस समय उनके सामने?
1: डॉक्टर कलाम का बचपन जो है वो बहुत कठिन था
0: जी,
1: लेकिन उनके जो विचार थे और जो उनके साथ जो लोग मिले, उन्होंने उनको एक तरह से सपोर्ट दिया, एक रोल मॉडल बन पाए
0: जी।
1: वो अधिकतर मतलब पेरेंट्स खुद ही मानते हैं बात को, कुछ टीचर जिनके नाम वो लिखते हैं, बताते भी हैं
0: जी।
1: ये दोनों ने मिलकर उनको मतलब इस प्रकार से प्रेरित किया कि वो बीएससी करे, उसके बाद इंजीनियरिंग करे, और उनको मौका मिल गया कि वो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में जुड़ गए, और वहां पर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो सब जगह लिखा हुआ है
0: जी।
1: उनका जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ जुड़ाव था, उसमें उनको फेलियर्स भी मिले एंड सक्सेस भी मिले। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है जो कि रश्मि जी की पुस्तक में भी आ रहा है
0: जी,
1: कि फेलियर्स को किस तरह से सामना करना और उससे डिफीट नहीं होना है ना, उसको आगे बढ़ाना है। तो उससे फिर वो जब डिफेंस में आ गए तो कुछ उनके मन में आ रहा था कि मैं तो स्पेस में इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, क्यों मुझे भेजा जा रहा है वहां पर। लेकिन जो उनको जब चुनौती बतलाई गई कि क्या है, और वो चाहते थे कि मिसाइल्स बनाई जाएं, और उनका जो एक्सपीरियंस है स्पेस रिसर्च में उससे उससे मिसाइल्स को भी फायदा बेनिफिट होगा
0: जी।
1: तो फिर वो यहाँ आ गए, और उन्होंने सबसे पहले मैं कहूंगा वो काम करा जो पुराने जो वहां पे वैज्ञानिक लोग थे नहीं कर पा रहे थे, वो था नवाचार। उन्होंने इनोवेशन को बहुत सपोर्ट दिया
0: जी,
1: और उस प्रकार से उन्होंने फिर जो अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी, जो मिसाइल्स बनाई एक के बाद एक, उन्होंने उनकी टीमों ने
0: जी,
1: वो तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि इन्होंने उसमें इनोवेशन लाया। और एक उदाहरण है अगर आप सुनना चाहें तो
0: जी,
1: समस्या थी जिसमें वो जुड़ रहे थे, जुड़े फंसे हुए थे, तो उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से और ढेरों मतलब इंस्टीट्यूशन से वहां के लोगों को बुलाया, उनके सामने प्रॉब्लम पेश करी गई, उनको 7 दिन का समय दिया गया, और जो उन्होंने उसमें सोल्यूशन निकाले उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करा गया, और फिर उसके साथ मिलकर उन्होंने अपना जब लॉन्च करे सैटेलाइट तो सक्सेसफुल हुए
0: जी।
1: इसी प्रकार से उनके मतलब ये रहता था कि जो सरकारी तरीके से अगर करते तो शायद उनको लग जाते उसमें महीनों लग जाते, यहाँ उन्होंने हफ्तों में वो करके दिखा दिया
0: जी।
1: फिर वो आगे एटॉमिक एनर्जी में उनको लाया गया, उस समय पोखरण की तैयारियां हो रही थी और उनके नेतृत्व में पोखरण 2 बनाया गया, और जिसकी वजह से फिर 1998 के बाद से हम लोग टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं
0: जी।
1: वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया, और उसके लिए वो अपनी तरह से पूरे क्लियर थे कि देश को पावरफुल होना चाहिए, और वो अगर पावरफुल है तो ही मतलब आगे बात बढ़ेगी, पीस रहेगा, और अगर पावरफुल नहीं है तो पीस रहना मुश्किल है
0: जी।
1: तो शांति के लिए उन्होंने मतलब ये करा था, और उसके बाद फिर वो समय देके वो चाहते थे स्पिरिचुअलिटी
0: जी,
1: और बहुत समय उन्होंने खर्च करा अपना 1997 के बाद से, कई गुरुओं से मिले, ब्रह्म कुमारी के वहां पे जाके समय बिताए
0: जी,
1: और भी कुछ करा। उनको लगता था कि मतलब हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ हम लोगों को यहाँ पर हम लोग आए हैं तो कुछ हमें करना चाहिए
0: जी।
1: वो समय उनके मेरे ख्याल 3-4 साल जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, फिर वो राष्ट्रपति बन गए, और वो तो माननीय हम लोग के वो पीपल्स प्रेसिडेंट रहे
0: जी।
1: क्या क्या नहीं करके दिखाया उन्होंने, जो उनका जुड़ाव रहा बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, वो देख के हम लोग को हमेशा ही मेरे ख्याल सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए इंस्पिरेशन बनते थे, उनको लगता था कि यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है जो कि बुजुर्ग लोगों के साथ बात करके शायद नहीं मिलती
0: जी।
1: तो जैसे हम लोग एक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस करते थे हर वर्ष, वो उसमें जुड़ते थे आके, और उनके पास अगर मतलब समय नहीं हुआ दूसरी बात है, लेकिन अदरवाइज उन्होंने मेरा ख्याल है कि 6-7 बार आए हैं वो, और उन्होंने मतलब बच्चों से बात करी है और प्रश्न पूछते थे
0: जी,
1: प्रश्न का जवाब देते थे, जो बच्चे प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देते थे। मेरा ख्याल है उनकी जो ये क्वालिटीज हैं, ये फ्यूचर के लिए बहुत मुश्किल होगा किसी और को ढूंढे मिले।
0: तो आपने तो देखा है बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों का उत्साह उस समय कैसा होता था, किस तरह की प्रतिक्रिया बच्चे देते थे?
1: बच्चे जैसे बिल्कुल मगमुग हो जाते थे
0: जी।
1: मेरे बगल में इधर एक लड़की बैठी हुई थी, पसीना टपक रहा है उसके, मैसूर में थे और कलाम साहब जो है उसको बात पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक दिस विल हैपन, ये वो इतना मतलब सिर हिला के उसके लिए मतलब उस सिर्फ उस पूरे हॉल में सिर्फ दो लोग थे, वो और डॉक्टर कलाम
0: जी,
1: बाकी 600 800 लोग और हैं वो उनके लिए मतलब नहीं था, क्योंकि इनसे बात करी थी उन्होंने, लड़की से बात करी, पूछा था कुछ
0: जी।
1: तो इतना मुझे अच्छा लगा कि देखो ये कैसा कम्युनिकेशन है बिटवीन सीनियर साइंटिस्ट एंड ए यंग गर्ल 12 इयर्स 13 इयर्स
0: जी,
1: लेकिन कंप्लीट कम्युनिकेशन है, वो लड़की समझ रही है क्या बोला जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि लड़की क्या जवाब दे रही है
0: जी।
1: और उसको मतलब बहुत एनकरेज करा और बैठा दिया। आई वुड लाइक टू नो कि वो लड़की कहाँ है, मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं जरूर साइंटिस्ट ही होगी
0: जी।
1: तो ये इस प्रकार का उनका जो पकड़ था वो इम्पॉसिबल टू रिट्रेस। एक और बताऊंगा मैं कि December 2004 में वो सुनामी आ गई थी, बहुत लोग डिस्टर्ब थे, उनका समय था हम लोग के साथ 26 तारीख का, वो 26 तारीख को ये सुनामी आ गई थी तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि 29 को आ जाएंगे, 29 को आ गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो राष्ट्रपति हैं, उनके सामने बहुत सी चिंताएं हैं
0: जी।
1: बहुत से लोगों में यहाँ भी मतलब कोस्टल एरिया पे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, वो भी परेशान थे, लेकिन उनका आगे हम बच्चों से बात करेंगे
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में सोच के जान के
0: जी। तो बच्चों को वो प्राथमिकता देते थे, उनके विचारों को सुनते थे और फिर समाधान भी करते थे, और इसीलिए शायद बच्चे जो हैं वो भी जो कलाम साहब ने उन्हें सपने देखने सिखाए थे उन पर वो आगे बढ़े हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो श्रेय देते हैं कलाम साहब को ही कि आज उन्हीं की वजह से हम ऊंचाइयां छू पाए जीवन
2: जी।
0: में जी। तो यहाँ मैं अनुज जी आपकी पसंद का एक गाना जानना चाहूंगी अपने श्रोताओं के लिए।
1: गाना में बहुत इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन हाँ एक गाना जो याद आ रहा है
0: जी,
1: छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी
0: जी,
1: नया जोर है ना, मिलके लिखेंगे कहानी
0: जी। बहुत ही प्यारा सा गाना,

गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। और जैसा कि ये गाना भी हमें कहता है, मिलकर लिखेंगे नई कहानी। तो कलाम साहब ने अपने जीवन से हमें ये प्रेरणा दी, उन्होंने नवाचार को प्राथमिकता दी और उन्होंने नए मस्तिष्क जो बच्चे थे उनके अंदर ऊर्जा भरी। यहाँ मैं डॉक्टर नकुल आपसे जानना चाहूंगी, कलाम साहब जब भी बच्चों से मिलते थे तो ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बड़े सपने देखो, ये हमेशा कहते थे। आपको क्या लगता है इस एक पंक्ति का क्या जादू रहा?

0: होगा।
1: प्रतिक्रिया ये जादू रहा कि उन्होंने खुद इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले किसी चीज को कहने से पहले वो खुद आत्मसात करते थे और फिर चाहते थे कि वो अपने अनुभव के आधार पर लोगों में उस बात को पहुंचा पाए। और उनका हमेशा ये रहा कि सपने आपके अंदर बड़े होने चाहिए कि आपको आपकी नींद गायब हो जानी चाहिए और जब तक आप वो सपना हकीकत में ना हासिल कर लें तब तक आप उस पे काम करते रहे। ये एक तो उनका ड्रीम का रहा। दूसरा, बहुत ऐसे कई अनुभव रहे व्यक्तिगत तौर पे। मुझे एक लाभ मिला, मेरे दिवंगत ससुर साहब के साथ उन्होंने काम किया डीआरडीओ में, वो भी साइंटिस्ट थे, वो भी एडवाइजर थे
0: जी।
1: तो कई बार उनसे पता चलता था कि देर रात तक काम करना और सुबह जल्दी उठना उनका नियम था। ये कई सालों से ये नियम था और ये नियम जब उनसे पूछा गया तो कहां से मिला, तो वो एक ऐसे परिवार में थे जिसमें चार भाई बहन थे वो, और उनकी सबसे बड़ी बहन ने उनको सहयोग करके उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट कराई थी
0: जी।
1: तो उसके अंदर उनको ये एहसास था कि कैसे अगर किसी चीज को प्राप्त करना है, वो कहते हैं ना कि नो पेन्स एंड नो गेन्स, उसका वो सार्थक उदाहरण थे और वो करके दिखाया उन्होंने
0: जी।
1: और रही बात उनके बच्चों के साथ और सबके साथ, उनका ये मानना था जैसे अभी हमने कहा कि वो पीपल्स प्रेसिडेंट थे, अभी सिन्हा साहब ने बताया कि उन्होंने मिसाइल पे काम किया
0: जी।
1: तो वो मिसाइल मैन हुए और ऐसे न जाने कितने एडजेक्टिव्स उनके साथ जुड़ते चले गए। उनका स्वभाव, उनका काम, वो एक आदर्श स्थापित करते चले गए। जैसे डॉक्टर अश्विनी ने बहुत अच्छा कहा अभी कि वो कोई भी चीज, कोई भी काम करने से पहले जो भी कुछ सोचते थे उसको पहले उसको प्रैक्टिकली कर। और साइंटिस्ट का एक मेरे ख्याल से गुण है कि वो कोई भी चीज अगर प्रपोज करता है, हाइपोथेसिस कुछ भी करता है, तो उससे पहले वो सोच के रखता है कि उसको प्रैक्टिकल कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये सारी तमाम चीजें अगर आप देखें, और साथ में उनकी जो एक और किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर ये आपको पढ़ने को मिलता है। और मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर रश्मि का उपन्यास और विंग्स ऑफ फायर हर एक बच्चे को और हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिसमें ये लालसा है, जिसमें वो समझता है कि चाहे वो वैज्ञानिक वो बैकग्राउंड से हो या ना हो, पर एक आम आदमी के अंदर एक आगे बढ़ने की ललक है। उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जिसे कहते हैं किसी भी चीज के लिए एक ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म या बुक होती है, उसी तरह से वो ये दो किताबें मेरे ख्याल से सबके लिए। इतने अच्छे तरीके से डॉक्टर रश्मि का उपन्यास सहजता से लिखा गया है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा वो रहेगा। इस पे अगर हम डॉक्टर रश्मि से भी और चर्चा करें तो बहुत अच्छा रहेगा
2: जी। बिल्कुल, मैं रश्मि जी अब आपसे जानना चाहूंगी
0: जी,
2: अगर हम सामाजिक पक्ष की बात करें डॉक्टर कलाम के, तो जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते थे, जिस तरह की कठिनाइयां उन्होंने झेली हैं और उसके बाद जो उपलब्धियां उनकी रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप इनके बारे में भी जरूर हमसे चर्चा करें और हमें ये बताएं कि आम तौर पर उस तरह की कठिनाइयों में बच्चे कैसा महसूस करते हैं और कैसे कलाम साहब एक उदाहरण बने सबके सामने।
3: जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल जब बच्चे सुविधाओं की बात करते हैं
0: जी,
3: तब हमें डॉक्टर कलाम बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण की तरह सामने आते हैं। डॉक्टर कलाम के अगर बचपन को देखें आप, तो धनुषकोटी के, रामेश्वरम के धनुषकोटी के एक छोटी सी जगह से निकले वे बालक थे जो कि सपने देखते थे। छोटा सा उनका घर जहां वो रह रहे अपने परिवार के साथ, अपने माता जी, पिताजी, उनके पिताजी मस्जिद के, और उस परिवार से वो निकल कर आ रहे हैं। और हम जैसा कहते हैं कि उन्होंने बचपन में अखबार भी बांटे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उनके जो कजन थे एजेंसी चलाते थे। डॉक्टर कलाम साहब ने उस बचपन में, जब आज हमारे बच्चे सुविधाएं मांगते हैं, उन्हें एसी रूम चाहिए, पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, तब डॉक्टर कलाम सुबह 4 बजे उठ करके ट्यूशन पढ़ने जाते थे, लौटते वक्त अखबार घरों घरों में डालते थे, इसके बाद आकर फिर अपने स्कूल पढ़ने जाते थे। तो इस तरह का उनका जीवन था। तो अगर आप कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, आप बड़े बनना चाहते हैं, तो आप उस बड़े व्यक्ति को ये ना देखें कि वो बड़ा बन गया, ये देखें वो बड़ा किस किस तरह से बना
0: जी,
3: किन किन जर्नियों से गुजरा, क्या क्या संघर्ष थे उसके जीवन में, तब वो बड़ा बना। तो डॉक्टर कलाम हमें यही बता रहे हैं, वो इतने बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रपति के पद पर रहे वो सब, लेकिन उन्होंने कभी, मैं उनको देखकर ये नहीं कहती कि वो लोगों को प्रभावित करते हैं या उन्होंने मुझे प्रभावित किया, नहीं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया
0: जी।
3: बहुत फर्क है इन दोनों शब्दों में कि आप प्रेरित हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा वैज्ञानिक, आप ये सोचिए कि वो अपने शांति के क्षणों में वीणा बजाता था
0: जी,
3: जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दी, वो कर्नाटक संगीत सुना करते थे
0: जी।
3: तो ये उनके जीवन के वो पक्ष हैं जो और हमें उनके लिए एकदम प्रेम से, आदर से भर देते हैं
2: जी। बिल्कुल, और

0: इनमें विरोधाभास भी नजर आता है, लेकिन एक इस तरह का विरोधाभास जैसा कि आपने कहा कि वो हमें प्रेरित करता है। मिसाइल मैन के हाथों में जब हम वीणा देखेंगे तो कैसी अद्भुत छवि वो लगेगी।
1: जी, क्योंकि मिसाइलें जो है वो मनुष्य को पूरा मनुष्य नहीं बना रही हैं। जब उसके अंदर संवेदनाएं हैं, जब वो संगीत से जुड़ा है, कला से जुड़ा है, तब उनके अंदर संवेदनाएं जागती हैं। क्योंकि डॉक्टर कलाम का जो कार्य था ना, अगर आप ध्यान से देखें तो वो अध्यात्म के स्तर पर था। उनके लिए वो भक्ति थी, देश प्रेम उनकी प्रगाढ़ भक्ति थी। तो हम ऐसे उन्हें समझते हैं आज।
0: जी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बार बार हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी कलाम साहब को पढ़ें, उनके बारे में जानें, क्योंकि जो सपने उन विद्यार्थियों के मन में हैं, उसकी राह इस जीवनी से हमें मिल सकती है, कलाम साहब को जानने से मिल सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, हम जब विकसित भारत की बात करते हैं और हम अभी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत हमें बनाना है, ये लक्ष्य हमारे सामने है, ऐसे में एक लक्ष्य उन्होंने रखा था इंडिया 2020, हम इस बारे में जानना चाहेंगे।
2: डॉक्टर कलाम के बहुत से कंट्रीब्यूशंस हैं
0: जी,
2: जिनको सबको लिस्ट भी नहीं करा जा सकता। अपना समय दिए और एक कमेटी में वो चेयरमैन थे, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल में, और उसमें उन्होंने 5 एरियाज जोड़े थे
0: जी,
2: जिसमें उन्होंने कहा था कि देश को काम करना चाहिए, जो आप कह रही है कि आगे कैसे बढ़े, विजन 2020 क्या होना चाहिए। एक उन्होंने कहा था कि कृषि और फूड प्रोसेसिंग जोड़ना चाहिए
0: जी,
2: और उसके उन्होंने मतलब कई सजेशन दिए थे उनकी कमेटी ने। दूसरा पावर जनरेशन, हम लोगों को जितनी हम लोगों को जरूरत है उसे उतनी होनी चाहिए, इस समय कम है। फिर उन्होंने एजुकेशन पर बहुत जोर दिया था
0: जी,
2: किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए हेल्थ केयर के साथ जोड़ के, और उस पर भी उनका अपना जो बड़ा तजुर्बा था हैदराबाद में, और उससे पहले भी हेल्थ के साथ बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा उनका। फिर उस समय जो आ रहा था ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
0: जी,
2: ये पिछले 20 वर्षों में हमने देखा ही है पूरा देश किस तरह से बदल गया। और फिर उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं डिफेंस के और स्पेस के
0: जी,
2: इसमें हमें आगे बढ़ के रहना चाहिए। तो विजन 2020 जो है उसमें इन सब चीजों को जोड़कर उन्होंने बनाया था। साथ में ये मतलब एक उनकी जो कि बैकग्राउंड उस तरह रह चुका है, उन्होंने कहा कि प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज
0: जी,
2: इसका मतलब पूरा PURA, वो कहते थे कि इस पे काम करो। तो उन्होंने IIT चेन्नई को, IIT दिल्ली को और कई संस्थाओं को जोड़ा था कि कैसे नहीं हम लोग कर सकते हैं कि लोग गांव में रहें और गांव में ही कंट्रीब्यूट करें, रादर देन कि सबके सब माइग्रेट करके शहरों में आए
0: जी।
2: तो रूरल एरियाज में उनका कहना था कि अर्बन फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो उसमें कई उन्होंने मतलब अपना समय लगाया, जो आपकी जो बता रही थी कि रात रात भर वो सोचते थे, समझते थे, बातचीत करते थे, और उससे उभर के निकल के आता था कोई अगर रिजल्ट। ये जो विजन 2020 है, मेरा ख्याल है कि अभी भी इसमें अगर देखा जाए तो जरूर बहुत से अच्छे एक्सपर्ट्स ने कंट्रीब्यूशन किया है, और उस पे डॉक्टर कलाम का छाप है, उस पे उनके हर एक सेंटेंस पे उनकी छाप है
0: जी। डॉक्टर नकुल, आपसे जानना चाहूंगी, जब कलाम साहब ने वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था, और आज जब हम कहते हैं कि हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अधिक से अधिक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे तुलना करेंगे दोनों समय की, आज हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड कैसा है?
3: देखिए, जैसे सिन्हा साहब ने अभी बहुत कुछ बताया कि उनका विजन 2020 का जो डॉक्यूमेंट था वो अपने आप में एक मानक था, एक स्टैंडर्ड था, जिससे बहुत कुछ बहुत जो उसके बाद का जो भी समय रहा उसमें जितने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े जितने भी मंत्रालय, करीब 9-10 ऐसे मंत्रालय जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से काम करते हैं, उन सब ने उसको समझने की कोशिश करी, उसको लेके आगे चलने की कोशिश की, वहां से बहुत कुछ लिया, उसको डेवलप किया
0: जी।
3: मेरा ये कहना है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, और खासकर अब तो हम देखते हैं कि हर छोटी सी चीज के लिए भी हम AI का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में भारत ने बहुत तेजी से पिछले 10-12 सालों के अंदर बहुत तेजी से काम किया है, और एक दौर रहा जहां हमने देखा कि इन सब चीजों के लिए, रिसर्च के लिए खासकर, जैसे कि कलाम साहब का खुद का कहना था, इसके लिए एक तवज्जो, एक इम्पोर्टेंस, एक इम्पीटस मिलना चाहिए, और इसके लिए जो रिसर्च के फंड्स हैं उनका उसमें इन्हेंसमेंट होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष देश का एक RDI जो 1,00,000 करोड़ का जो रिसर्च का जो फंड है वो जो भारत सरकार ने लाए हैं वो बहुत बड़ी चीज है। फिर रिसर्च के अंदर उनका ये बहुत आवश्यक था कि जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जो एक मानक होते हैं कि आप क्या रिसर्च करते हैं
0: जी।
3: तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बेचारे इतने महंगे रिसर्च से वंचित रह जाते थे, तो सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया
0: जी।
3: इस तरह से आप देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वांटम मिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मिशन है जो सुचारू रूप से उस पर काम कर रहा है, और देश के जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक और बड़े बड़े लोग हैं सब उसमें जुड़े हुए हैं और तेजी से उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत

0: करता है कि हमने समय के साथ अपने आप को उसके साथ जोड़ के रखा और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि कलाम साहब का वो सपना
1: जी
0: हम सब और खासकर विज्ञान का सपना हम पूरा कर पाएंगे। बस एक बात कहने में जरूर करना चाहूंगा कि इसके साथ विज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाने का जो प्रयास है उसको और तवज्जो देने की जरूरत है
1: जी। उसमें हम और बहुत कुछ
0: कर सकते हैं।
1: जी पीपीपी मॉड्यूल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइंस में है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है।
0: जी
1: यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, जैसा कि अभी डॉक्टर नकुल ने कहा कि हम जो साइंस है उसे आम लोगों तक पहुंचाएं, तो आपके विचार में क्या किया जा सकता है?
2: जो डॉक्टर कलाम ने जो हम लोगों को राह दिखाई है
1: जी,
2: उसमें ही बहुत जो गुण हैं आगे बढ़ने के, जो ये पूरा जो उनका प्रोग्राम था
1: जी,
2: और जो उसमें कई वैज्ञानिक जुड़े साथ में, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी कृषि एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, किसान के पास सही इनपुट्स मिलते हैं, उसको सही टाइम पे मिलते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ सकता है और अपने फिर परिवार का भी ध्यान रख सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हर हर स्टेप पे हम लोगों डॉक्टर कलाम के जो आइडियाज थे और जो जो लिख के रखे हैं, सजेस्ट किए हैं, उसमें हम लोग को ढूंढना चाहिए, कई सोल्यूशन मिल जाएंगे हम लोगों को।
0: जी बिल्कुल।
1: तो कलाम साहब ने जब विभिन्न पद संभाले, जिम्मेदारियां संभाली, तब भी हमारा नेतृत्व किया, बहुत योगदान दिया उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, और आज अगर हम उनका लिखा हुआ पढ़ेंगे तब भी हमें समाधान मिलेंगे। रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक इस तरह का प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि अगर आप छोटी बच्ची होती और आज आप कलाम साहब से मिलती तो आप उनसे क्या सवाल करती, अगर आपको मौका मिलता तो?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं सच में अपने अंदर एक छोटी बच्ची महसूस कर रही हूँ। आज डॉक्टर कलाम मेरे सामने होते और मैं उनके सामने ये पूछती कि सर, ये दुनिया जो आज इतना दौड़ रही है, भाग रही है, विनाश की तरफ जा रही है, इसे हम कैसे रोकें? और सच मानिए, डॉक्टर कलाम का यही सपना था कि इस धरती को रहने योग्य बनाना है। वो इतने बड़े बड़े पदों में पहुंचे लेकिन अंततः अपने आप को एक शिक्षक मानते रहे
1: जी,
3: कि मैं एक शिक्षक हूँ। और ये असीम कृपा है उनकी ईश्वर पर कि जब वो दुनिया से दैहिक रूप से गए तो एक शिक्षक के रूप में ही गए। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उनमें कभी विलासिता नहीं थी, बस एक शिक्षक का गुण था।
0: बिल्कुल।
3: अपने सामने बैठे लोगों को इतना ध्यान से समझाते थे, इतने प्यार से बताते थे, जैसा सर ने बताया कि वही इनका जो गुण है वो हम आज याद करते हैं, क्योंकि उनकी विनम्रता, उनका मिसाइल मैन होना जो बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है, लेकिन करोड़ों आंखों में जो सपने देकर गए वो विरासत है हमारे लिए, जो हमेशा हमारे पास रहेगी। तो मैं उनसे यही प्रश्न करती कि अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस दुनिया को रहने लायक अपनी तरफ से एक योगदान दे सकूँ।
1: जी, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया इसका, और शायद ये हम सबके मन में सवाल होना चाहिए कि हम अपनी ओर से क्या योगदान कर सकते हैं अपने देश को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ इसी मोड पर आप बताएं, आप कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
3: मुझे लगता है ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: वाह।

0: सिर्फ इस गाने के बोल ये नहीं है, बल्कि हम सबके दिलों में यही भावना है कि हमारा देश आबाद रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे और हमें इस तरह का नेतृत्व प्राप्त होता रहे अपने लक्ष्यों के लिए, जैसा डॉक्टर कलाम ने दिया था। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, अगर हमारे युवा साथी जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो वैज्ञानिक बनने का सपना देखते हैं, तो उनके सामने कौन से दरवाजे अभी खुले हैं, उन्हें किस तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहिए?
1: जो वैज्ञानिक है या कोई भी स्पेशलाइजेशन में
0: जी,
1: आजकल बड़ा नैरो एरिया हो गया है हर एक वैज्ञानिक के लिए, हर एक स्पेशलिस्ट के लिए
0: जी।
1: और ये नकल भी मुझे मान जाएंगे, हम लोग जो है वो ओपन माइंडेड इतने नहीं हो पाते हैं कि काम कर सके, या जो युवा पीढ़ी है उनको गाइड कर सके। हम लोग चाहते हैं वो भी उसी नैरो एरिया में ही स्पेशलाइज करें, तो ये एक चिंता की बात है। परंतु इट इज लार्जर क्वेश्चन। मेरा कहना है कि डॉक्टर कलाम के अगर उससे हम लोग चले तो इन्होंने जैसे अपना फर्स्ट स्टेज कहते हैं वो था हमारा, जब हम इसरो के साथ थे तो हमने जो है जब सैटेलाइट लॉन्च के लिए काम किया। सेकेंड स्टेज जैसे रॉकेट का होता है, सेकेंड स्टेज में मैं जो था DRDO के साथ था और उसमें जो मैंने कंट्रीब्यूट करा मिसाइल मैन के लिए बन गए। थर्ड स्टेज जो था वो जब राष्ट्रपति थे, और फोर्थ स्टेज कहते हैं कि जब राष्ट्रपति की गद्दी छोड़नी होने उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने मतलब अपनी जिंदगी कहाँ शुरू करी थी एज एरोनॉटिकल इंजीनियर, एज एरोस्पेस इंजीनियर
0: जी,
1: और किस तरह से वो अपने को भी उभारते रहे और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो ये एक अगर सोच और विचार के साथ आदमी आगे बढ़े तो मेरा ख्याल है कि जो भी उससे सामने समस्या आएगी उसका वो सही हल भी निकाल लेगा और कंट्रीब्यूट भी कर सकेगा
0: जी।
1: तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है वो नैरो स्पेशलाइजेशन ना रखें अपने को, परंतु जो फ्यूचर की जनरेशन आ रही है उनको इस तरह से गाइड करें कि वो जो है असली में कंट्रीब्यूट कर सके। डॉक्टर कलाम का बहुत से छोटे छोटे वो भी थे, राइटिंग में जो लिखते थे, एक तरह से फेल का क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग
0: जी,
1: दैट वाज हाउ ही वुड पुट इट, कि कहने फेल नहीं हुए तुम, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। और कहते थे कि हमारा कैरियर देखो, इसरो में भी वो SLV-3 इन्होंने जब लॉन्च करवाया फेल हो गई, वे बड़े दुखी हुए, सचिन धवन ने इनको एनकरेज करा, नेक्स्ट टाइम सक्सीड कर गए। कहते हैं जब तक सीख करेंगे नहीं तब तक सीखें कैसे। दूसरा उन्होंने कहा था जैसे कि जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, या ये है कि साइकिल आपको चला रही है, तो एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट देखने का
0: जी।
1: और ऐसी बहुत सी उनके जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, कुछ तो मेरे ख्याल रश्मि जी की किताब में लिखे हैं
0: जी,
1: वो बड़े अच्छे हैं। और उनसे हम लोग जब बात करते हैं विद्यार्थियों से, तो हम लोग उन्हीं के ये इस तरह के जो आइडियाज हैं उनको यूज भी करते हैं और लोगों से तालियां पिटवाते हैं
0: जी। जी, यानी वो कलाम साहब के दिए हुए हैं लेकिन हम आज तक उसका फायदा उठाते हैं। हाँ। जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर नकुल, जैसे हम बार बार ये जान रहे हैं कि कलाम साहब बच्चों से सीधा संवाद करते थे और बच्चे बहुत पसंद करते थे इस बात को और प्रेरित होते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं। जब इस तरह के हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, इस तरह की शख्सियत जो होती हैं, बच्चों से जब सीधे बात करती हैं, आपको क्या लगता है कि उनके मानस पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा? भले ही वो वैज्ञानिक ना बनना चाहें, भले ही उन्होंने अभी अपने जीवन के लिए कोई ऐसा लक्ष्य नहीं चुना है, बच्चों ने बस पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके मन पर प्रभाव पड़ता है इन बातों का?
2: देखिए, देश काल परिस्थिति कुछ भी रही हो, कभी भी रही हो, कोई भी क्षेत्र में कोई भी बड़ा व्यक्ति जब अपने स्तर से उतर के बच्चों से बात करता है तो उसका प्रयास

0: में जाएं, बच्चों से मिलें, बच्चों के अंदर वहां पे शुरू करें, क्योंकि जो भी कुछ है वो घर से ही शुरू होता है। और अगर आप उनको कैच देम यंग का जो उनका फॉर्मूला है, अगर आप वो करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का और कलाम साहब का जो अपने आप में एक अनूठा वो उदाहरण है, उनका ये हमेशा से प्रयास रहा है। और मेरे ख्याल से स्कूलों के अंदर भी जब हम देखते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति उसके अंदर आता है, तो जैसे मैंने आपसे अभी शुरू में जिक्र किया था कि एक कलाम साहब का एक एनेक्डोट है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जब वो वहां ट्रिची में पढ़ रहे थे तो उनको उनके कॉलेज में उनके एक टीचर थे जिनका नाम था कैलकुलस सोलोमन। तो वो कहते थे कि उनके एक टीचर थे तोतादरी आयंगर, तो जब वो आएंगे तो तुम देखोगे। तो उनके बारे में उन्होंने जिस तरह से लिखा है, कुछ लाइनें जो उनकी शुरू की हैं वो अपने आप में इस बात का बखान करती हैं, पूरा चित्रण करती हैं कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, क्या आता है। तो बच्चे बहुत एक सरल हृदय होते हैं और उनके मन पे वो आप उसको जैसा चाहें वैसा मोल्ड करते हैं। अगर शुरू में उनको अच्छा मोल्ड करते तो अच्छा बन जाते हैं। तो वही उनका प्रयास है, उनका व्यक्तित्व जब आके स्टेज पे उन्होंने हमसे बात करी, उसका प्रभाव मेरे जीवन में आज तक है। तो ऐसे ही न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं हम सबके जीवन में रहे होंगे। जब हम अपने शुरुआत में जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है तुम क्या बनना चाहोगे, तो बच्चा छूटते बोलता मैं टीचर बनना चाहूंगा, क्योंकि टीचर उस वक्त एक रोल मॉडल होता है, समय के साथ वो रोल मॉडल बदलते रहते हैं। बहरहाल जैसे रश्मि जी ने कहा कि आज अगर बच्चों के अंदर रोल मॉडल के लिए अगर हम कलाम साहब के बारे में ज्यादा लोगों को बताएं, और ये आपका कार्यक्रम अगर इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो सुन रहे हैं उनमें भी अगर अति भर भी अगर ये एक बात हम पहुंचा पाए तो बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। मेरे ख्याल से ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में यही प्रयास हमारा कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, और साथ ही मन की बात में प्रधानमंत्री जी जिन घटनाओं का उल्लेख करते हैं या विशेष तिथि अगर कभी बताते हैं उसके पीछे एक पूरा संदर्भ होता है, और हमारा प्रयास यही रहता है कि उसके बारे में हमारे श्रोता अधिक जाने, और खासकर हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं वो जाने भी, क्योंकि उनके सामने की तो ये घटनाएं नहीं है, लेकिन साथ ही वो प्रेरित भी होते रहें और समसामयिक चुनौतियां जो आज उनके सामने हैं, जिसे हम ग्लोबल इश्यूज कहते हैं, वो उनका समाधान हमारे इन प्राचीन घटनाओं से, इन शख्सियत से, इन व्यक्तित्व से, इन संदर्भों से लेते रहें। मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर कह रही हूँ, आप तीनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, और आपके बहाने हमने पीपल्स प्रेसिडेंट को, हमने अपने प्रिय कलाम साहब को और मिसाइल मैन को, देश के लिए इतना बड़ा योगदान करने वाली एक महान शख्सियत को और जाना, उनके बारे में कुछ अनछुए पहलू हमें पता चले। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे अनुज सिन्हा जी। आप साइंस कम्युनिकेटर हैं, पूर्व निदेशक हैं आप विज्ञान प्रसार के, साथ ही आप एडवाइजर भी रहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे डॉक्टर नकुल पराशर। आप अप्लाइड फिजिक्स में आपने पीएचडी की, आप ऑथर हैं, विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, साथ ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड आप रहे, और आप भी विज्ञान प्रसार के निदेशक रहे हैं। डॉक्टर नकुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि, आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं, कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी, साथ ही कलाम तुम लौट आओ, कलाम इंस्पायर्स, ये पुस्तकें आपकी हैं, और आप कलाम साहब के मार्गदर्शन से ही अपनी पुस्तक आपने पूरी की है। तो डॉक्टर रश्मि, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने समय दिया, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मेरे अपने आदर्श डॉक्टर कलाम साहब पर बोलने का मौका दिया। आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद।
1: जी, तो आज के कार्यक्रम से हमने यही सीखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना केवल वैज्ञानिक भारत का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जहां हर बच्चा जिज्ञासु हो, हर युवा नवाचारी हो, और हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। कलाम साहब जो कहते थे, और जो हम सोशल मीडिया पर बार बार पढ़ते हैं, और जिसे हम अपने इंस्पायरिंग लाइंस बनाकर अपने घर की दीवारों पर चिपकाते हैं ताकि सुबह आंख खुलते ही हम इसे देखें और मोटिवेटेड हो, ये पंक्तियां हमें दी कलाम साहब ने। तो उन्हें आदर भाव से याद करते हुए मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से अनुमति लूंगी। इस कार्यक्रम के संयोजक रहे दिलीप झा, और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता

0: शाहनवाज खान और प्रमोद कुमार वत्स के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास मां कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैनर

आज के इस प्रसारण में मैं मेनका देव आप सब सैनिक भाइयों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। गीत संगीत के इस कार्यक्रम का आगाज करने से पहले आइए एक नजर डाल देते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम आज का गीत प्रसारित किया जाएगा 12:30 पर और कार्यक्रम सबरंग का समय होगा 12:38।

समाचार प्रसारित किया जाएगा 1:05 पर। कार्यक्रम गीतिका का वक्त होगा 1:10 पर। कार्यक्रम शीर्षक संगीत का समय होगा 1:40 पर। समाचार प्रसारित किया जाएगा 2:00 और आज का अंतिम कार्यक्रम गीत अपना धुन पराई लेकर हाजिर होंगे 2:30 पर। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: फौजी भाइयों, आइए अब आरंभ करते हैं आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पेश है पहला गीत फिल्म कयामत से। आवाज है अभिजीत और अलका याग्निक के। इस गीत के गीतकार है समीर और संगीतकार है नरेश शर्मा।
1: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

प्रस्तुत है अगला गीत उदित नारायण की आवाज में फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। इस गीत के शब्द रचनाकार है समीर और सुरों से सजाए है नदीम श्रवण ने।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पेश है अंतिम गीत फिल्म सुहाग से। इस गीत के गायक कलाकार है उदित नारायण और अलका याग्निक। इस गीत के बोल लिखे समीर ने और संगीत बोध किया है आनंद मिलिंद ने।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों, अब पेश हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको आज फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का गीत सुनवाने जा रहे हैं। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल के। इस गीत के गीतकार है गरिमा वाहल और सिद्धार्थ और संगीतकार है विक्की प्रसाद।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम है सबरंग, पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डाल देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमेशा की तरह कार्यक्रम का आगाज होगा 12:10 पर। पेश किया जाएगा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत 12:12 पर। कार्यक्रम आज का गीत प्रसारित किया जाएगा 12:30 पर और कार्यक्रम संगीत माधुरी का वक्त होगा 12:38 पर। समाचार प्रसारित किया जाएगा 1:05 पर। कार्यक्रम गीतमाला का समय होगा 1:10 पर। कार्यक्रम वतन के तराने प्रसारित किया जाएगा 1:40 पर। समाचार प्रसारित किया जाएगा 2:00 और कल का अंतिम कार्यक्रम चयनिका लेकर हाजिर होंगे 2:30 पर। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है मिले जुले गीतों पर आधारित कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में पेश है पहला गीत फिल्म आशीर्वाद से, आवाज है लता मंगेशकर के।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं मिले जुले गीतों पर आधारित कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में पेश है अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सफर से।

प्रसार भारती सभी व्यापारिक संस्थानों के लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। अब आप यूनिपोल आउटडोर एडवर्टीजमेंट स्ट्रक्चर के जरिए अपने व्यावसायिक संस्थानों का विज्ञापन आकाशवाणी के दूरदर्शन केंद्र के प्रांगण में भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र के उप महानिदेशक अभियंत्रिका से संपर्क करें। फौजी भाइयों, अब आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में पेश है अगला गीत, याद रखी की दुनिया फिल्म से अमित कुमार की आवाज में।

0: Women's 78 kg category will lead India's judo challenge. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचार के बाद आप सब सैनिक भाइयों का स्वागत है। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। फौजी भाइयों, अब से 1:40 तक आप ये कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे 529.1 मीटर पर। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है पुराने सदाबहार गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम में पेश है पहला गीत फिल्म चाइना टाउन से। आवाज है मोहम्मद रफी के।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं पुराने गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम में पेश है अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आराधना से।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं पुराने गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतिका आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषी से। पेश है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कल और आज और कल से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है शीर्षक गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक संगीत। कार्यक्रम में पेश है पहला शीर्षक गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, फिल्म हम आपके हैं कौन से है।

0: इस गीत के साथ ही शीर्षक संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अभी 2 बजने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में आप क्रमशः सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti

0: reaction, but had decided to suspend the planned strike to allow diplomacy to move forward. He said Iran and other countries in the West Asia had urged Washington to delay military action because the perimeters of a deal has been agreed to. According to Trump, the proposed agreement would include the immediate, complete and total opening of the Hormuz Strait and an end to Iran's nuclear threat. Iran had not officially confirmed the claims made by the U.S. president. Indian Ambassador to the U.S. Vinay Mohan Quatra has stressed that Pakistan must first dismantle the terror infrastructure that it has built if it wants India's cooperation on bilateral issues. Pakistan had recently convened a conference in Islamabad to protest India's decision to hold the Indus Waters Treaty in abeyance. In an article published in a news magazine, Mr. Quatra criticized a former foreign minister of Pakistan for threatening war against India if Islamabad's demands on the Indus River system are not met. Ambassador Quatra stated that threatening war against India to distract from its internal problems has become a standard policy option for Islamabad. On to sports. In badminton, India's Tanvi Sharma claimed her maiden BWF World Tour title, defeating Vietnam 6-seeded Nguyen Thu Linh 21-16, 21-16 to win the Taipei Open Super Women's Singles title today. 17-year-old Tanvi became the youngest Taipei Open champion, surpassing Taiwan's Tai Tzu Ying. She is also the first Indian woman to win the title since Saina Nehwal in 2008. At the Glasgow Commonwealth Games, India's medal hunt enters the final day with judo and track cycling offering the last opportunities to add to the tally. Avtar Singh in the men's 100kg, Yash Gangas in the men's plus 100kg and Ishroop Narang in the women's 78kg category will lead India's judo challenge, while Ronaldo Lak Tong Jam will compete in the men's 1000m time trial in track cycling. Para-track cycling events are also scheduled on the closing day. A report.
1: India enters the final day in fourth place in the medal table with 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze. After its most productive day of the Commonwealth Games, led by record 7 gold medals in boxing, the boxers produced India's best ever Commonwealth Games campaign in the sport, topping the medal table with 7 gold and 3 silver medals. Jasmine Lamboria, Preeti Pawar, Priya Ghangas, Sakshi Chaudhary and Arundhati Chaudhary won women's titles, while Sachin Sivach and Ankush Pangha secured gold in the men's event. Olympic medalist Lovlina Borgohain settled for silver in the women's 75kg category, while Jadumani Singh and Narinder Barwal also finished runners-up in their respective men's weight classes. India's judokas also scripted history, winning 4 medals in the country's best-ever Commonwealth Games performance in the sport. Harsh Singh and Asmita Day became India's first judo gold medalist at the Games, while Yamini Maurya won silver and Unnati Sharma claimed bronze. Para-athletes added another landmark chapter, securing 7 medals, 3 gold, 2 silver and 2 bronze. Their best ever Commonwealth Games haul. Soman Rana won the men's 5F7 para shot put gold with a season best throw of 13.40 meters, while Shubham Joyal took silver. On the track, Gulveer Singh became the first Indian to win a Commonwealth Games 5000 meter medal by claiming bronze, supplementing his earlier silver in the 10,000 meters. Komudi Parikh for Akashvani News.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. U.S. President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open, and in Commonwealth Games, India enters the final day with fourth place in medal tally. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
2: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 एनडीआरएफ और 33 एसडीआरएफ टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपेई ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपेई ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
7: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
2: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: समाचार के बाद एक बार फिर आप सब सैनिक भाइयों का हार्दिक स्वागत है। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाइयों, अब पेश है आज का अंतिम कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई, जो विदेशी धुनों पर आधारित है। प्रस्तुत है पहला गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म यारा दिलदारा से।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विदेशी धुनों पर आधारित कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। कार्यक्रम में पेश अगला गीत अलीशा चिनॉय की आवाज में फिल्म क्या लव स्टोरीज है।

इस गीत के साथ ही गीत अपना धुन पराई कार्यक्रम समाप्त ही समाप्त होता है। साथ ही साथ समाप्त होता है हमारा आज का प्रसारण। कल फिर आपसे मुलाकात होगी दिन के 12:10 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।

0: अब से शाम 5 बजे तक आकाशवाणी रेनबो द्वारा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर के एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार।
1: दोस्तों, जब बारिश का मौसम आता है तो हर तरफ हरियाली होती है, हमें अच्छा लगता है जब मौसम में बदलाव होता है, गर्मी से एक राहत मिलती है। लेकिन कई बार ये अपने साथ कुछ ऐसे इन्फेक्शंस, कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है जिसका सोल्यूशन बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए मौजूद है रेडियो डॉक्टर।

0: आज का ये अंक लेकर, जिसमें हम बात करेंगे इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, यानी बारिश में होने वाली आमतौर पर क्या समस्याएं होती हैं, क्या संक्रमण होते हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी होता है, और अगर किसी कारणवश आपको ये बीमारी या इन्फेक्शन हो जाए तो क्या सावधानी लेकर या किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, इस सब के बारे में भी आपको इस कार्यक्रम में जानकारी मिलेगी। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है आज के हमारे दो रेडियो डॉक्टर्स से मैं कराना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता, आप CMO एट CGHS हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर विष्णु आपका स्टूडियो में।
1: धन्यवाद मैम।
0: और हमारी दूसरी एक्सपर्ट दूसरी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर तनु जैन, आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
2: धन्यवाद मैडम, और सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और बहुत सारी हमारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो खास तौर पर इस बीमारी इस समय जो मौसम चल रहा होता है उस पर केंद्रित होती है, यानी बरसात में। और कई बार हम इसका आनंद लेते लेते ये भूल जाते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि सावधानियां भी बहुत जरूरी हैं जिससे ये बीमारी हमें हो ना जाए या ये संक्रमण हमें हो ना जाए। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं हर रेडियो डॉक्टर में अपनी समस्याओं के साथ, आज भी इस कार्यक्रम में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपना भागीदारी शो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ खूबसूरत से गीत भी सुनेंगे, लेकिन आपके प्रश्नों का हमें इंतजार है। सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करूं मैं डॉक्टर विष्णु आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हम ये विषय आज जो लेकर आए हैं इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, कौन से ऐसे इन्फेक्शंस खास तौर पर इस मौसम में आप देखते हैं?
1: देखिए, जैसा कि आपने बताया कि बारिश का मौसम चारों तरफ खुशियां लेके आता है, हर कोई खुशी से भर जाता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों। स्पेशली जो किसान होते हैं उनके लिए ये जो बारिश का मौसम आता है वो एक नई उमंग और नई ऊर्जा लेके आता है। लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये जो बारिश का मौसम होता है इसमें क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। दूसरा, बारिश के जो शॉर्ट स्पेल्स होते हैं, छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि घर के आसपास, घर के सराउंडिंग में जो छोटे गड्ढे या छोटी चीजें ऐसी जो पड़ी होती हैं, टायर पड़ा हुआ है, कोई गमला पड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या होता है कि मच्छर बहुत पनपते हैं, और जब मच्छर पनपते हैं तो वो बीमारियां पैदा करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे जो बारिश का पानी होता है वो ओवरफ्लो होता है, नालियों में जाके मिल जाता है, नालियां ओवरफ्लो होती हैं, कई बार सीवर का जो पानी होता है वो कई बार वाटर जो लाइन होती है उसके साथ कंटामिनेटेड हो जाता है, तो उसकी वजह से, दूषित पानी की वजह से भी बीमारियां होने लग जाती हैं। तो अगर हम मोटा मोटा इसको क्लासिफाई करें कि बारिश के मौसम में जो होने वाली बीमारियां हैं वो बेसिकली चार तरह की बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी होती है जो मच्छरों के काटने से होती है, इसमें मेनली जो होता है इस सीजन के अंदर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारियां काफी प्रोमिनेंटली देखी जाती है और ये एक पीक सीजन माना जाता है इन मौसमी बीमारियों के लिए। तो ये बेसिकली होती है आपके घर के आसपास जो पानी इकट्ठा होता है उसमें जो मच्छर पनपते हैं उसकी वजह से। जो दूसरी बीमारी होती है वो होता है दूषित पानी को पीने से या दूषित खाने को खाने से। तो इसमें मोस्टली जो बीमारी हम मानते हैं वो होता है टाइफाइड फीवर होता है, एक हिपेटाइटिस ए और ई जिसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं कई बार, और एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। पहले कोलेरा वगैरह भी होता था लेकिन कोलेरा आजकल देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली टाइफाइड फीवर और जॉन्डिस इस तरह का, या फिर किसी किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस या लूज मोशन जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है। तो ये दो तो बेसिक बड़ी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जब भी वेदर चेंज होता है तो एक फ्लू लाइक बीमारियां होती है जिसको हम वायरल फीवर भी बोलते हैं, जिसमें आपके गले में खराश हो जाती है, आपके गले में खिचखिच होने लग जाती है। तो ये भी जब बदलता मौसम होता है स्पेशली बारिश के मौसम में ये भी देखने को मिलता है। चौथी जो बीमारी अगर मोटा क्लासिफिकेशन करें तो पेशेंट्स में कई बार कंजक्टिवाइटिस, जैसे आपके हाथ वगैरह गंदे होते हैं तो आप गंदे हाथ अपनी आंखों के आसपास लगाते हैं तो उससे आंखों के में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, लाल जिसको आंख हम बोलते हैं, वो भी इस बारिश के मौसम में काफी देखने को मिलती है। और इसी में एक चीज और इंक्लूड करते हैं, कई बार फंगल इन्फेक्शन, जैसे आपने देखा है कि बारिश के अंदर, जैसे हमने बात करी कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आपके कपड़े जो होते हैं स्पेशली जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो कई बार हम बोलते हैं कि अच्छे से सूखे नहीं होते हैं, उन्हें हम पहन लेते हैं, तो हमारे जो ऐसी जगह होती हैं उन जगह पे लाल लाल दाने या फिर चकते जैसे बन जाते हैं जिसको हम दाद खाद खुजली कहते हैं। तो ये जो चार मोटी बीमारियां होती हैं, चार तरह की जो बीमारियां होती हैं, ये बारिश के मौसम में काफी देखने को मिलती है।
0: जी, बहुत सारी आपने इन्फेक्शंस और बीमारियां बताई, फंगल इन्फेक्शंस भी, बैक्टीरियल भी, और स्किन इन्फेक्शंस, वायरल भी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। तो जरूर हमारे श्रोता चाह रहे होंगे कि अपने जो प्रश्न है हम तक पहुंचाएं, तो उन्हें पुनः बता दें कि आप अगर हमें कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तनु मैम हमारे साथ हैं। अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि तौर पर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बहुत बढ़ जाती हैं इस मौसम में। पहले तो ये कारण भी सर ने बताया, क्योंकि पानी का जमाव होता है।

0: हम सब जानते हैं, पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी खासतौर पर कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और इनके कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं कि अलग हैं।
1: जी, तो ये जो वेक्टरबॉर्न बीमारियां हैं, ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीन बीमारियां हैं जो पूरे ही कंट्री में, हर प्रदेश में और यूटीज में प्रेजेंट हैं। लेकिन कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे लिम्फेटिक फाइलेरियसिस है, कालाजार है, जो भी वेक्टरबॉर्न डिजीज है, वो कुछ लिमिटेड स्टेट्स में है। और ये सारी ही बीमारियों के लक्षण जो शुरू होते हैं वो फीवर से शुरू होते हैं। तो बुखार एक कॉमन लक्षण है जो सारी ही बीमारियों का होता है। साथ ही साथ जो बारिश की आपने बात की, तो बारिश के साथ ह्यूमिडिटी तो एक फैक्टर है ही कि होती है, और पानी का जमाव भी एक फैक्टर होता है। लेकिन एक फैक्टर होता है जो घर के आसपास कूड़ा और गंदगी पड़ी हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो जैसे छोटे नारियल के खोल पड़े हैं या छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे पड़े हैं, उसमें जो पानी भर जाता है, स्पेशली जो एडीज मस्किटो होता है, जिसे हम टाइगर मस्किटो कहते हैं, जो डेंगू के लिए होता है, वो उसमें पनपता है। तो एक हफ्ते से ज्यादा साफ पानी अगर किसी भी जगह पर भरा रहे, जो आपके गमले हैं घर के अंदर, उसके अंदर ट्रे होती है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, इन सबके अंदर ये जो पानी भरता है इस सीजन में, उसके अंदर हफ्ते भर तक अगर स्टैग्नेंट रहे, वाटर्स खड़ा रहे और उसको आप ड्रेन आउट ना करें, तो उसके अंदर ये इसके मच्छर के अंडे पनपते हैं और ये एडल्ट में बन जाते हैं। और ये मच्छर बहुत ही हार्डी एक मच्छर होता है। मैं बताना चाहूंगी कि इस मच्छर का एक बड़ा टिपिकल कैरेक्टर है कि डे बाइटर होता है, डेंगू खास करके डे बाइटर होता है, और ये दिन के टाइम काटता है। और इसकी प्रेफर्ड प्लेसेस हैं कि ये पैर पे काटेगा, ईयर लोब पे काटेगा, हाथ पे काटेगा, तो ये वाले सारे पार्ट्स होते हैं, और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिन भर आप इधर उधर बैठे हैं, कहीं पे स्टिल बैठे हैं, तो वो काटेगा। एक मच्छर लगभग 10 से 15 लोगों को भी बाइट कर सकता है टू कंप्लीट इट्स ब्लड मील, जो उसका होता है, उसका जो जितना खून उसको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, एक मच्छर एक दिन में 10 से 15 लोगों को भी बाइट कर सकता है, और वो सभी को इन्फेक्शन दे सकता है अगर वो इन्फेक्टेड है।
0: okay.
1: तो ये एक बहुत डेंजरस मस्किटो होता
0: मतलब
1: है जी।
0: अगर घर में आ गया तो वो फिर सारे फैमिली मेंबर्स को
1: तो इसीलिए प्रिकॉशंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने घर के आसपास सफाई रखें। और एक और चीज होती है, ह्यूमिडिटी के साथ साथ इनकी लाइफ जो होती है वो लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाती है, तो ये एग से एडल्ट में जल्दी बन जाते हैं, तो मस्किटो का बहुत रैपिड प्रोलिफरेशन होता है।
0: जी,
2: चेंज कीजिए, तुरंत कपड़े चेंज कीजिए, मोटे कपड़े से, मोटे तौलिए से अपने पूरे शरीर को सुखा लीजिए, फिर थोड़ा सा एक गर्म चाय या गर्म सूप या कुछ ऐसी गर्माहट वाली चीज ले लीजिए, तो फिर उसके बाद में आपको इस तरह से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे, फिर भी उसके बावजूद भी लगे कि आपको बुखार आ रहा है या आपके गले में कुछ खराश, कुछ ऐसी चीज हो रही है, तो आप किसी डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं।
1: हाँ, लेकिन ये पक्का है कि वो बारिश के भीगने से नहीं, पानी के भीगने से नहीं, वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो कॉमन होता है उस सीजन में, तो हो सकता है आपको वायरल हो और आप भीगने से उसको एसोसिएट करें, तो ऐसा
0: ऐसा नहीं है। पर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, थोड़ी गर्माहट लानी चाहिए और गीले को बहुत देर तक गीला नहीं छोड़ना चाहिए।
2: आपके जो गीले कपड़े हैं वो जैसे ही आपको जगह मिलती है, मौका मिलता है, आप उनको चेंज कर दीजिए, बेस्ट तरीका ये।
0: जी, हमारे इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो
3: जी, नमस्कार।
0: जी जी, नमस्कार।
3: दीदी, गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी पूछे, क्या पूछना है गौतम साहब?
3: मेरा पूछना था कि वायरल फीवर के क्या लक्षण है और बुखार से इसका क्या अंतर है और ट्रीटमेंट क्या है, कृपया विस्तार से बताएं।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। डॉक्टर साहब बताएं, डॉक्टर विष्णु, वायरल फीवर का आपने जिक्र भी किया था कि इस मौसम में बहुत होता है, तो क्या डिफरेंस है नॉर्मल फीवर से और किस तरह से उपचार किया जाता है?
2: देखिए, वायरल फीवर अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो हम इनको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो वायरल फीवर जो फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ आता है, जिसमें आपको हल्का सा फीवर आएगा, वो फीवर काफी तेज नहीं होगा, आपके गले में खराश होगी, हल्की सी ठंड लगेगी आपको। और जो दूसरा वायरल फीवर हम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर डेंगू और आपका चिकनगुनिया आता है, ये भी बेसिकली है तो वायरस डिजीज ही, क्योंकि डेंगू वायरस होता है और चिकनगुनिया वायरस होता है, तो इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो सिंपल वायरल फीवर जो होगा उसमें कभी भी आपको तेज बुखार नहीं आएगा, और उसके साथ कोई एसोसिएटेड फीचर होगा, जैसे आपको ठंड लगेगी, आपके थोड़े से आपको कोराइजा होगा, नाक बहेगी आपकी, आपके गले में इरिटेशन होगा, इस तरह के सिम्टम्स होंगे, तो वो जनरली वायरल फीवर होता है। और ये यूजुअली क्या है, दो तीन दिन तक आप सिंपल अगर फीवर हो रहा है तो पैरासिटामोल लेंगे, गर्म चीजों का सेवन करेंगे, जैसे गर्म चाय ले ली, गर्म कॉफी ले ली, गर्म सूप ले लिया, इस तरह की चीजें खाएंगे, तो दो तीन दिन में ये सेटल डाउन यूजुअली हो जाता है। इसका दूसरा स्पेक्ट्रम जो है, अगर हम वायरल फीवर दूसरे की बात करें, तो एक डेंगू और एक होता है आपका चिकनगुनिया। तो डेंगू और चिकनगुनिया के अंदर जो बेसिक फीचर डिफरेंस होता है, डेंगू फीवर में आपको जो फीवर होता है वो तेज, काफी तेज फीवर आता है, आपकी आंखों के पीछे, जैसे आप अपनी आंखों को घुमाएंगे, अगर आप आंखें बंद करके अपनी आंखों की पुतलियों को

0: घुमाएंगे तो आपकी आंखों के पीछे आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा। ये एक इसका काफी टिपिकल फीचर होता है। हल्की सी रैश आपके शरीर पे आपको देखने को मिलेगी तीसरे चौथे दिन। रैश आपको चिकनगुनिया में भी देखने को मिलती है, लेकिन वो उसमें अर्ली रैश होती है। दूसरा जो फीचर जो डिफरेंशिएट हम करते हैं, जो चिकनगुनिया फीवर होता है उसमें आपके जॉइंट्स ज्यादा इन्वॉल्व हो, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे किसी जगह पे बैठ गए और आप मूव नहीं कर पा रहे हैं। आप उठ के जा रहे हैं तो आप ऐसा लग रहा है जैसे ओल्ड एज में कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी कमर झुक जाती है, हाथ झुक जाते हैं, तो वो अपनी कमर को सीधी नहीं कर पाते।
1: जॉइंट्स
0: जो स्टिफनेस होती है वो चिकनगुनिया में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। फीवर उसमें भी आता है लेकिन उतना तेज नहीं आता जितना आपको डेंगू में आता है। डेंगू में उसके अपोजिट क्या होता है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होता है, उसमें बोन्स और मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। मतलब आपकी बोन्स ऐसे लगेगी जैसे आपको किसी ने कंबल में लपेट के पीटा हो, तो आपको पूरा बदन टूटेगा लेकिन आपके जॉइंट्स इतने स्टिफ नहीं होंगे। और फीवर आपको देखने को मिलेगा, आपकी आंखों के पीछे दर्द होगा और थोड़ी सी रेस्ट देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक आपका डिफरेंस है डेंगू और चिकनगुनिया फीवर के अंदर।
2: आपने बताया कि डेंगू, चिकनगुनिया और कॉमन वायरल फीवर में जो डिफरेंसेस हैं वो सारे लोगों को ध्यान रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि वैसे तो आप वायरल जो भी बुखार होगा आप सिर्फ पैरासिटामोल लें, कोई और दवाई ना लें, क्योंकि डेंगू के अंदर में अगर आप कोई और दवाई लेते हैं जैसे लोग आइबुप्रोफेन ले लेते हैं या कोई एंटीबायोटिक या ऑफ द काउंटर कोई दवाई लेते हैं तो वो नुकसान कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर में आपके चांसेस हैं कि कहीं पे आपके प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। उसी के साथ में डेंजर साइंस थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे 3-4 दिन में अगर वायरल है तो वो अपने आप निकल जाएगा, लेकिन अगर डेंगू है तो उसमें डेंजर साइंस यूजुअली ये होते हैं कि 7 डेज तक वायरस आपकी बॉडी में रहता है, और 7 दिन के बाद अगर आपको फिर भी बुखार है और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी डायग्नोसिस डेंगू की बनी हुई है ऑलरेडी, आपने टेस्ट करा लिया है, तो दूसरे से तीसरे दिन अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपको डायग्नोसिस मिल जाएगी। तो अगर आपको बुखार बना हुआ है या पेट में दर्द होता है या वॉमिटिंग होती है या रैशेज आते हैं या कहीं से ब्लीडिंग होती है तो वो डेंजर साइंस है। तो जो कहते हैं ना कि डेंगू बुखार खतरनाक हो सकता है, तो ये खतरनाक होने के फीचर्स हैं जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए बुखार उतरने के बाद भी। तो कोई जरूरी नहीं है कि बुखार रहेगा बट पेशेंट ऐसा कहेगा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, फीवर भी नहीं है, कुछ अपेरेंटली दिख नहीं रहा पर ठीक नहीं लग रहा है, खास करके अगर पेट में दर्द है, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं जिनको लोगों को सोचना चाहिए। और दूसरा चिकनगुनिया में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, ये लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होती है, इससे नॉट डिसेबिलिटी बट लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी होती है। ये पेन जो है काफी दिन तक रहता है, कई कई केसेस में देखा गया है कि जॉइंट आपका एक एक साल तक परसिस्ट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। इसमें घबराना ये नहीं है कि ये हमें ही क्यों हो रहा है, ये जिसको भी चिकनगुनिया होगा तो उसको ये परेशानी होगी, लेकिन हमें ऐसी बीमारियां करनी ही क्यों है, ये आपका जो एक प्रोग्राम है इसके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये इजिली प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं, और ये अपना ख्याल रखना है, अपने घर का ख्याल रखना है, अपने घर के आसपास का ख्याल रखना है, तो ये इस तरह की बीमारियां होंगी नहीं। तो ये जरूरी है कि लोग अपने आप प्रिकॉशंस लें और पर्सनल प्रोटेक्शन।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि हम ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और ये सारी बीमारियां आपको ना हो, लेकिन वो यही बात है कि जब तक हमें पता ना हो, अवेयर ना हो, तब तक हम उस चीज के लिए उतनी जानकारी नहीं समेट पाते हैं। तो बिल्कुल ये सही माध्यम है, यहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं, और मैसेजेस भी बहुत हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हम एक गाना सुनकर वापस आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

0: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज बात कर रहे हैं इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, बारिश के दौरान होने वाली संक्रमण और बीमारियों के बारे में। और हमारे गेस्ट हमारे रेडियो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता और डॉक्टर तनु जैन। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करम का दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी बताएं, क्या प्रश्न है आपका?
1: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को शालिंदा से ही नमस्कार।
0: जी नमस्कार, स्वागत।
1: और दोनों डॉक्टर साहिबान को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: मेरे दो सवाल है
0: जी।
1: एक मिठाई और एक सवाल है। पहले मैं सवाल पे आता हूँ। वैसे तो मुझे जो है ना श्वसन एलर्जी है और स्किन के मुतालिक भी एलर्जी है, तो जब भी कोई टेस्ट होती है घर में तो मैं छींक आने शुरू हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है और जब घर की सफाइयां करता हूँ मैं तो मेरे को खुजली शुरू हो जाती है शरीर में। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इसके लिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक गंगोत्री का पानी और वर्षा का पानी, ये दो पानी सबसे शुद्ध पानी माने जाते हैं या कहा जाता है, तो क्या इसको इस्तेमाल करने के बाद हमें कॉर्पोरेशन के पानी से भी नहाना चाहिए? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा मिथ ये है कि जब हम लोग नहाते हैं और उसके बाद हम कपड़े भी धोते हैं तो मैंने तरीका बताया है कि मैं जब नहाता हूँ और उसी वक्त अपनी शरीर की सफाई कपड़ों के साथ

0: सफाई की, तो फिर उन्हीं कपड़ों को मैं पहन लेता हूँ और पंखे के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, 15 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं। तो मुझे मेरी जो प्रॉब्लम, मुझे इसमें रिलीफ मिल रहा है, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए धन्यवाद। प्रश्न थोड़े अलग से प्रश्न है, डॉक्टर साहब बताएं क्या बताना चाहते हैं।
2: देखिए, आपका जो मिथ है, पहले मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि आप जब नहाते हैं उसी के साथ कपड़े धोते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई बुराई नहीं है अगर कोई नहाते वक्त कपड़े धोता है। तो जो गलती आप जो करते हैं वो ये है कि आप जैसे ही कपड़े धोते हैं उनको सुखाने के बजाय उनको पहन के पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। वो इसलिए कि जैसे कि हमने अभी बात करी कि बारिश के सीजन के अंदर अगर आप गीले कपड़े पहनेंगे तो वो कुछ ऐसी जगह होती है हमारे बॉडी के अंदर जहां पे वो पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पसीने के रूप में या फिर आप ये कहें कि वो नमी के रूप में फंगल इन्फेक्शन को इनिशिएट कर सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप गीले कपड़े पहन के पंखे के नीचे खड़े हो जाएं। दूसरा, जैसे कि हमने हमसे किसी श्रोता ने भी पूछा था कि मैं बारिश में भीग जाता हूं, तो हमने उसे सजेस्ट किया था कि कभी भी आप बारिश में भीगते हैं तो घर आके सबसे पहले अपने गीले कपड़े चेंज कर लीजिए और अपने बदन को एक सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए और कुछ गर्माहट वाली चीज लीजिए। तो अगर बारिश के मौसम में अगर आप गीले कपड़े पहनेंगे और पंखे के नीचे खड़े रहेंगे तो नेचुरल है कि आपको कोई बीमारी पकड़ भी सकती है और आपको फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना भी रह सकती है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बात कर रहे थे इस गाने से पहले कि कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं और वायरल के बारे में आपने बताया था। मैं जानना चाह रही थी डॉक्टर तनु आपसे कि मलेरिया भी बहुत फैलता है, लेकिन उसका जिक्र अभी तक हमने नहीं किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
3: जी, तो मलेरिया जो है उसका बुखार थोड़ा सा फर्क होता है और उसमें एक हॉट फेज होता है जहां पे काफी हाई ग्रेड फीवर आता है और उसको चिल्स के साथ आता है, काफी तेज ठंड लगती है और फिर फीवर आता है और फिर प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। तो ये एक टिपिकल सिस्टम होता है कि पहले आपको बहुत तेज ठंड लगेगी। तो वो ठंड बहुत तेज का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कंबल पहन लें या हल्का चादर डाल लें। आपके ऊपर 1, 2, 3 कंबल इस मौसम में भी अगर डालेंगे तो आप कहोगे जी मुझे ठंड लग रही है अभी भी। तो वो चिल्स कहते हैं हम उसको, वो बहुत कस के चिल्स आती हैं और फिर बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है और उसके बाद आप सारे कंबल उतार दोगे आप, क्योंकि आपको पसीना स्वेटिंग आके वो उतरता है बुखार। तो ये एक टिपिकल सिस्टम होता है। इसमें भी थोड़ा हेडेक ज्यादा होता है, मसल पेन ज्यादा होता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है और यूजुअली ये सिम्टम्स जब होते हैं तो हम मलेरिया सस्पेक्ट करते हैं। ये मच्छर के काटने के 7 से 10 या 15 दिन बाद इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और अगेन इसका मच्छर जो है को एनोफिलीज मस्किटो कहते हैं और ये पनपता है जो आपका गंदा पानी है ठहरा हुआ, जैसे नाले हो गए, ड्रेन्स हो गए या सॉलिड जो आपके घर के आसपास गंदगी पड़ी है उसके अंदर पानी बहुत दिन से पड़ा हुआ है और ठहरा हुआ पानी है, तो ये मच्छर भी वहां पे पनपता है। और ये मच्छर यूजुअली शाम के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम में काटता है। खास करके इसके प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको रात में सोते वक्त मच्छरदानी के अंदर सोना है, ये बहुत जरूरी है और ये आदत है जो सारे लोगों को लगा लेनी चाहिए अपने घरों में मच्छरदानी। दूसरा जो है, शाम होते होते अगर आप लोग के घरों में जाली वाली खिड़कियां हैं तो उनको जरूर बंद कर दें और मच्छर ताकि अंदर ना आ पाए। और अगर नहीं है तो हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अपने घर में जाली की खिड़की दरवाजे जरूर रखें जिनको कि शाम होते ही बंद कर दें जिससे कि मच्छर अंदर ना आए। और इस वाले सीजन में अगर हो सके तो दोपहर में भी जब आप सोएं तो मच्छरदानी के अंदर सोएं क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। खास करके प्रिकॉशंस लेने हैं कि जो एल्डरली हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं, उनको जरूर मच्छरदानी में सुलाएं और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करें और मच्छरदानी के अंदर सुलाएं क्योंकि इस तरह की बीमारियां जब गर्भवती महिला में होती हैं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। तो सब लोग प्रिकॉशंस लें, एक तो सफाई रखें, किसी भी तरह का जल भराव आसपास ना होने दें, दूसरा जो है पूरी बहाके और पूरे कपड़े पहने और मच्छरदानी के अंदर सोएं। और जब भी आपके यहाँ स्वास्थ्यकर्मी आए कोई स्प्रे करने या घर के अंदर या घर के बाहर तो उनका पूरा सहयोग करें। तो ये सब चीजें करेंगे तो फिर ये इस तरह की बीमारियों से हम छुट्टी।
1: खासतौर पर हम प्रिकॉशंस पर आज बार बार बात करेंगे कार्यक्रम के थ्रू आउट, क्योंकि जैसा मैम ने भी कहा कि ये प्रिवेंटेबल है, प्रिकॉशंस ली जाए अगर सही तरीके से हम ध्यान रखें तो ये नहीं होंगी बीमारियां। और ये मैसेज आया है अनूप कुमार जी का रांची से कि प्लीज टेल अबाउट स्प्रिंग एलर्जी एंड क्योर। तो डॉक्टर विष्णु, स्प्रिंग एलर्जी क्या इस मौसम में होती है?
2: देखिए, स्प्रिंग एलर्जी जो है ये सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, इसको हम हे फीवर भी बोलते हैं, इसका नाम है। और ये मोस्टली होती है जैसे ही आपकी सर्दी जाने लगती है और उसके बाद में जो स्प्रिंग सीजन आता है उसमें ये होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि सर्दियां जाती हैं तो पेड़ पौधे हैं वो खिलते हैं, उनमें फूल निकलते हैं थोड़े से, और घास है वो एक नई करवट लेती है, पत्ते शेड होते हैं।

0: तो उस दौरान क्या होता है कि हवा में पोलन ग्रेन्स फैल जाते हैं, छोटे छोटे कण आपने देखे होंगे, जैसे ही सर्दियां जाती है और फरवरी और मार्च के स्टार्टिंग में हवा में छोटे छोटे छोटे छोटे कण तैर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम होती है उसे जो स्प्रिंग्स एलर्जी बोलते हैं वो होती है। और उसका कारण
1: रेस्पिरेटरी
0: इलनेस है। और वो आपको केवल रेस्पिरेटरी नहीं, जैसे आपकी आंखों में आ गए तो आपकी आंखों के अंदर कंजक्टिवाइटिस या आपकी आंखों में पानी आने लगेगा, नाक में चले गए तो लगातार छींके आने लगेगी, आपकी स्किन में, जैसे किसी किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है तो आपकी स्किन पे अगर वो कण बैठ गए तो उस जगह पे आपको खुजली होने लगेगी। तो ये सिम्टम्स डिपेंड करता है कि वो जो एलर्जन है वो कहाँ पे जाके लैंड किया है।
1: अच्छा, तो ये खास तौर पर, लेकिन आपने बोला है कि सर्दी और मौसम बदलाव के बाद,
0: बारिश के मौसम में तो हे फीवर या स्प्रिंग एलर्जी चली जाती है, क्योंकि बारिश की बूंदों की वजह से जो कण होते हैं ना वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे पोल्यूशन चला जाता है बारिश के मौसम में, वैसे ही हे फीवर कम देखने को मिलता है,
1: मतलब जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं
0: वो सेटल डाउन
1: हो गए। सागर मखीजा जी हमसे पूछ रहे हैं विजयपुरा कर्नाटका से कि मेनी पीपल आर फेसिंग फ्लू लाइक इश्यूज ड्यूरिंग मॉनसून, हाउ इट कैन बी डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड, इन मेनी स्टेट्स कोविड इज ऑल्सो ऑन राइज, और एक क्वेश्चन और है कि व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक सो दैट वी डोंट गेट एनी इन्फेक्शन ड्यूरिंग मॉनसून। तो हमने अभी तक यही सारी बातें की हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं सागर जी तो आपने सुन लिया होगा, अगर इसके अलावा भी आप कुछ जोड़ना चाहें आप लोग तो बताएं। वैसे तो ये बात हम अभी कर ही रहे थे,
0: फ्लू सीजन हर मौसम में, जब भी मौसम बदलेगा फ्लू सीजन आएगा, तो कोविड भी एक तरह का फ्लू ही था, तो उसमें भी हमने कोविड पे जो विजय प्राप्त की थी वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों से प्राप्त की थी, या तो मास्क से और सोशल डिस्टेंसिंग पे। तो अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं आपको या आपके परिवार में या आपके किसी दोस्त को, तो उसको बोलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे और मास्क पहने। अगर आपका फीवर 3 दिन से ज्यादा है और ये चीज आपको वरीसम कर रही है तो नियर बाय डॉक्टर से जरूर मिले।
2: जी, ये मास्क के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी, जो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि मास्क पहने, तो बाहर अगर आप कुछ और कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पे लोग अपने आप मास्क पहनना शुरू कर देते हैं, उनको कोई बताता नहीं है। तो जब फीवर आपको खांसी जुकाम है तो टू अवॉइड कि दूसरे लोगों के तक पहुंचे तो मास्क पहने। और एक चीज जो प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हाथ धोना समय समय पे, चाहे वो रेस्पिरेटरी इलनेस हो, चाहे कंजंक्टिवाइटिस हो जो आंखों में हो जाती है, चाहे आपकी फूड बॉर्न इलनेस हो, वाटर बॉर्न हो, जो ये सब फैलती हैं बीमारियां, अगर सब लोग हाथ धोने का ध्यान रखेंगे कि प्रिकॉशंस लेंगे, और जो एक हमारा यूनिवर्सल हैंड वॉशिंग टेक्निक है कि कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथ को ठीक से धोएंगे साबुन से और साफ पानी से, तो बहुत हद तक इन सब बीमारियां जो एयरबॉर्न है, जो आपकी वायरल इन्फेक्शन है, उससे हम छुट्टी पा सकते हैं।
1: जी, ये बहुत जरूरी बात है ध्यान रखना कि सफाई पे भी बहुत जोर है। और एक ये मैसेज हमारे पास आया है, श्याम मित्तल जी लिख रहे हैं रोहिणी से कि हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग वैक्सीन एंड व्हेन इट हैज टू बी टेकन। और धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है, करंट इश्यूज और जो खासतौर पर जो मौसमी बीमारियां उस पर जो हम कार्यक्रम लेते हैं उसकी ये तारीफ कर रहे हैं। तो धन्यवाद श्याम जी, आप इस तरह से जुड़े हुए हैं कार्यक्रम के साथ। क्या कुछ वैक्सीन से इनको बचाया जा सकता है डॉक्टर साहब?
0: देखिए, अगर हम मौसमी बीमारियों की बात कर रहे हैं बारिश से रिलेटेड, तो इसमें जो प्रोमिनेंट बीमारी है वो टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर के लिए इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। पहले कॉन्जुकेट पॉलीसेक्राइड वैक्सीन हम लगाते थे जो 2 साल से बड़े बच्चों को लगती थी, लेकिन अब कुछ टाइम पहले एक नई वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस हुई है, उसकी सिंगल डोज ही लगती है, जो टीवीसी टाइफीवार वैक्सीन जिसे हम बोलते हैं, उसकी सिंगल डोज लगती है और 6 महीने से लेके आप 45 साल तक के किसी भी उम्र के व्यक्ति को लगा सकते हैं और ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है इससे।
1: अच्छा, टाइफाइड
0: के लिए
1: जी,
0: पहले पहले 3 तरह की वैक्सीन और भी होती थी, एक ओरल वैक्सीन भी आती थी टाइफाइड के लिए, लेकिन वो अब ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि जब से नई वैक्सीन आई है, और दूसरा क्या है कि उसकी सिंगल डोज लगती है तो इसलिए वो पॉपुलर ज्यादा है। हालांकि अभी हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वो इंक्लूड नहीं हुई है, पर ये प्राइवेटली काफी अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर और आप इसे लगा सकते हैं, अगर स्पेशली आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपके घर के अंदर इस तरह की बीमारियां बार बार देखने को मिलती हैं।
1: तो आप रिकमेंड करते हैं कि इस तरह की लगा लेनी चाहिए, पर उसको 45 इयर्स तक को ही क्यों आपने माना है?
0: तब तक इम्यूनिटी डेवलप होने लग जाती है,
1: उसके बाद लगाने से फायदा नहीं है।
0: लंबा कोई मतलब मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं वो आपके अवॉइड हो चुके होते हैं।
1: ओके, तो मैक्सिमम जो उसका फायदा है वो 45 इयर्स तक ही होता है। अच्छा, एक हमारे कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है समय। हेलो,
3: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार, जी अपना नाम बता दीजिए।
3: जी मैं नवीन भाई रेडियो वाला।
1: हाँ, प्रश्न बताएं।
3: जी मैं मैम से सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि छोटे बच्चे तो मानते ही नहीं है, बस ऋतु में बारिश में नहाते रहते हैं, छोटे बच्चे भीगते रहते हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाए, इससे कोई फीवर वगैरह की तकलीफ ना आए।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बिल्कुल यही एक प्रश्न मेरे पास मैसेज के माध्यम से भी आया हुआ था जो मैं अगले लेने वाली थी, तो मैं उसको भी पढ़ देती हूँ। नरदेव सिंह चौहान जी ने लिखा था कोटद्वार उत्तराखंड से कि सभी को नमस्कार, और बरसात में बच्चे शौक से भीगते हैं और ठंडा गर्म खा पी लेते हैं, तो बच्चों के लिए खासतौर पर क्या आप लोग बताना चाहेंगे?
1: देखिए, प्रिकॉशन चाहे छोटा है या बड़ा है, दोनों के लिए समान है। छोटे बच्चे क्योंकि बारिश को ज्यादा पसंद करते हैं, बार बार जाके बारिश में भीगते हैं, तो कोशिश करिए कि उसका बारिश का जो स्पेल है वो ज्यादा बड़ा ना हो। मतलब 5-10 मिनट आप भीगते हैं तो ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक बारिश में ना भीगें। अगर बच्चे बारिश में भीगते भी हैं तो उसको तुरंत, जैसे ही बारिश खत्म होती है, बारिश से जैसे ही बाहर आता है, उसके गीले कपड़े आप तुरंत उतार दीजिए। उतार के उसके पूरे शरीर को गर्म टॉवल से या टॉवल से, मोटे टॉवल से पहुंचिए ताकि पानी ना रहे, और उसके बाद में उसको कुछ जैसे हल्का सा गर्म दूध या गर्म चाय, इस तरह की चीजें उसको दीजिए। ये सिंपल प्रिक्यूशंस हैं जो सबके लिए बराबर हैं।
0: तो यहाँ पर एक ब्रेक लेकर आते हैं, एक गाना सुनते हैं, और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज बात हो रही है विभिन्न ऐसी बीमारियों के बारे में जो खास तौर पर बारिश के मौसम में हम देखते हैं और उसके बारे में काफी बातें हम डॉक्टर साहब से जान चुके हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और कैसे बचाव किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे, आगे भी करेंगे और कर भी चुके हैं। लेकिन कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं जिसमें, जैसे डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं किसी भी बीमारी की तो उसमें हम बोलते हैं हर ऋतु में एक खान पान की बात जरूर होती है, लाइफ स्टाइल की बात जरूर होती है, हमारे कार्यक्रम में उसकी कोशिश करते हैं कि उसके बारे में भी अपने श्रोताओं को बताएं। तो क्या खास तौर पर बारिश के मौसम में, मॉनसून सीजन में कुछ ऐसी प्रिकॉशंस खाने पीने से रिलेटेड लेनी चाहिए? जैसे एक प्रश्न है मैसेज के माध्यम से सरोज मल्होत्रा जी का आया है साकेत मेरठ से कि क्या मॉनसून में दही खानी चाहिए या नहीं और डाइट क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा बताएं।
1: पहले तो ये मिथ इनका दूर कर देता हूं कि बारिश क्या किसी भी मौसम में आप दही खा सकते हैं, दही खाने से कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज जो इन्होंने पूछी थी कि बारिश में खान पान के लिए हमें क्या स्पेशल प्रिकॉशन और क्या ध्यान रखना चाहिए, आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में आपके घर के अंदर कोई सामान होता है, फ्रिज के अंदर भी रखा होता है लेकिन वो जल्दी खराब हो जाता है। बारिश में आपने देखा अचार होता है, अचार में फफूंदी लग जाती है, कोई जैली पड़ी होती है जैसे बच्चे खाते हैं, जैम पड़ा होता है, जैम के अंदर एक व्हाइट कलर के ऊपर लेयर जमने लग जाती है, फंगस लग जाती है ना। पापड़ पड़े होते हैं, पापड़ अगर एक दो मतलब 15 दिन भी अगर आप फ्रिज में उसकी ह्यूमिडिटी मिल जाती है तो उसके अंदर भी फंगस लग जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि बारिश के दिनों में फूड जो इंग्रेडिएंट होता है, फूड जो होता है वो जल्दी स्पॉइल हो जाता है, खराब जल्दी होता है। तो अगर आप खराब फूड को अगर खा लेंगे, जैसे बासी फूड है, अगर उसको अगर आप खाएंगे तो नेचुरल है कि वो आपकी बॉडी में जाएगा और आपको बीमार करेगा ही करेगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होती है कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि बारिश के दिनों में, बारिश में नालियां होती हैं, आपके ड्रेन्स होते हैं, ये ओवरफ्लो हो जाते हैं और कई जगह क्या होता है कि आपका जो पोटेबल वाटर होता है, जो हमारे घर में पीने के लिए जो पानी सप्लाई होता है, वो कई बार मिक्स हो जाता है आपके सीवर लाइन से या कहीं भी छोटी सी लाइन में आपका मतलब
0: कहीं ब्रेकेज है
1: उसमें आपका मिक्स हो गया और वो पानी आपके घर के अंदर आ गया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया तो नेचुरल है कि वो आपको बीमार करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपको बचाव करना ही है तो बारिश के दिनों में जो आप पानी यूज करते हैं उसे उबाल के ठंडा करके फिर यूज करें, खाना कभी भी बासी खाना ना खाएं और ताजा शुद्ध घर का बना हुआ खाना खाएं। तीसरी चीज, जैसे हमने कई बार देखा है कि स्ट्रीट पे कई बार स्ट्रीट फूड होता है, गोलगप्पे होते हैं, छोले भटूरे होते हैं, स्ट्रीट फूड जो लोग खा लेते हैं, तो बारिश के दिनों में इन्हें अवॉइड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे कई लोगों की आदत होती है कि बाहर जो कटे हुए फल मिलते हैं, ठेले लगा के बैठे रहते हैं, वो 3-4 तरह के फल काट के और आपको दे रहे होते हैं, तो बारिश के दिनों में स्पेशली इस तरह के फूड को अवॉइड करना चाहिए।
0: तो मतलब मेन यही है कि घर का बना हुआ
1: साफ खाना, ताजा खाना वो खाना
0: का। तो ये हर मौसम में ही
1: हर मौसम में
0: जाता है, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा ज्यादा और अगर एहतियात ली जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वही आपने जैसे बताया ह्यूमिडिटी है तो उसमें ग्रोथ ज्यादा जल्दी होती है। डॉक्टर तनु जी, एक प्रश्न ये आया जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अनूप कुमार जी लिख रहे हैं रांची से कि मलेरिया इराडिकेशन कार्यक्रम है 2030 तक इसको इराडिकेट करने का, तो वो बताएं। और साथ ही मैं चाहूंगी कि और भी सरकारी जो प्रयास हो रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के चलते कि किस तरह से इनको खत्म किया जाए, तो उन प्रयासों के बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: जी, तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल और ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है और इस इंस्टीट्यूट में 6 वेक्टर बॉर्न बीमारियां जो मेजर है हमारी कंट्री में उससे

0: के तहत सारी पॉलिसी बनाई जाती है और प्रोग्राम पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें तीन मेजर बीमारियां जिसपे हम थोड़ी चर्चा भी कर चुके हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया आती हैं। और इसमें जो मलेरिया का इन्होंने गोल पूछा है वो SDG गोल है एलिमिनेशन का, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक गोल होता है। तो अगर देखा जाए तो जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट इस साल में आई थी उसमें ऑलरेडी हमारे कंट्री ने जो पैरामीटर्स थे अचीव करने के 2025 तक, वो अचीव कर लिए हैं। 80% से ज्यादा केसेस में डिक्लाइन आया है 2015 से 2025 के बीच में, और डेथ्स में भी लगभग 80% के ऊपर डिक्लाइन आया है, कम हुई है हमारे यहाँ पे मृत्यु भी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस कंट्री के लिए। लेकिन अभी जो डेफिनेशन के हिसाब से हमको जीरो केसेस पे जाना है, तो ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो जिले हैं 160 जिलों में 3 साल से पिछले जीरो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है देश की, और ये अथक प्रयास हैं भारत सरकार के जिसके चलते ये सारी हमें अचीवमेंट्स हो पा रहे हैं। और इसी के तहत में जो नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो सुचारू रूप से चलता है, और स्टेट्स की सहायता से जो नेशनल हेल्थ मिशन है हमारा, जो एक बहुत ही बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत PIP जो होती है या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान की जो मीटिंग्स होती है उसमें स्टेट के साथ बैठ के पॉलिसी बनाई जाती है। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक, विलेज लेवल तक क्या क्या एक्टिविटीज करनी है उसके लिए प्रोग्राम किया जाता है, और उसके लिए बजट भी प्रोवाइड किया जाता है स्टेट्स को। तो कौन सी नई दवाइयां आई हैं, कौन से हमें किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी है, जब अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटीज क्या करनी है, मीडिया एक्टिविटीज क्या करनी है, इन सब पे विचार करके और उसके लिए फंडिंग की जाती है। तो ये तो एक मलेरिया का प्रोग्राम हुआ, इसी तरह डेंगू चिकनगुनिया में भी रहता है। दो और बीमारियां हैं जो थोड़ी सी टच करना चाहूंगी मैं, हाथी पांव जिसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कहते हैं, वो भी हमारे देश में काफी मात्रा में पाए जाते हैं, और उसके लिए भी एक मच्छर ही जिम्मेदार है। आपको ये भी, बहुत सारे श्रोताओं को शायद नहीं पता होगा कि हाथी पांव अगर आपने अपने आसपास देखा है या हाइड्रोसील जो होती है उसको अगर आपने कहीं पे देखा है तो वो मच्छर के काटने से बीमारी फैलती है, जो लोगों को नहीं पता होता है। लोगों को लगता है कोई चोट लगी है या कोई घाव हुआ था, कोई जख्म हुआ था जिसकी वजह से हमें ये हो गया। कुछ लोग तो इसको जो है सोचते हैं कि ये कोई अभिशाप है हमें दिया हुआ। तो ये भी एक मच्छर जिसे हम क्यूलेक्स मच्छर कहते हैं, और शाम होते ही आप देखेंगे कि ये न्यूसेंस मस्किटो भी कहलाता है, क्योंकि ये शाम होते ही आपका पूरे में घूमने शुरू कर देता है, और इसके काटने से इतनी भयंकर बीमारी होती है और उसका कोई इलाज भी नहीं होता। अगर आप 25-30 साल की उम्र में किसी को हो जाए तो जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनके साथ वो बीमारी रहेगी, अगर स्टेजेस बढ़ गई। इसमें पैर फूल जाता है और पैर के अंदर में जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज बंद हो जाती है और पैर का साइज बढ़ जाता है। जैसे हाथी पांव इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हाथी का पांव होता है उस तरह होता है, उसके अंदर फोल्ड्स आ जाते हैं और फोल्ड्स के अंदर में इन्फेक्शन होता है। तो ये काफी भयानक बीमारी होती है, और इसके लिए भी अब ये जो गोल है हमारा 2027 तक हमको less than 1% माइक्रोफाइलेरिया रेट करना है। ये एक छोटा सा पैरासाइट होता है जो मच्छर काटता है तो आपके ब्लड में छोड़ जाता है, और वो बड़ा पैरासाइट, बड़ा एक वर्म बन के आपके लिम्फेटिक्स में पैर के पहुंच के वहां पे बैठ जाता है। एक और बीमारी है जो कालाजार है, और उसके लिए अच्छी खबर ये है जो कि 4 ही अभी राज्यों में है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और उसमें भी सब जगह नहीं है, 54 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें है और लगभग 633 ब्लॉक्स हैं। तो ये बीमारी को 2023 में हम एलिमिनेट किए हैं। इसका एलिमिनेशन का गोल है कि एक केस से कम हो पॉपुलेशन में 10 लाख में, तो वो गोल हम अचीव कर चुके हैं, और अगर ये हम सस्टेन कर गए हैं तो अगले साल हम लोग WHO को डॉजियर के लिए अप्लाई कर सकेंगे और ये बीमारी हमारे देश से एलिमिनेटेड हो जाएगी। और एक आखिरी जो बीमारी हम लोग देखते हैं वो जैपनीज एनकेफेलाइटिस है या दिमागी बुखार जिसे कहते हैं, ये भी कुछ 20 राज्यों तक ही सीमित है, और इसके अभी तक बहुत ज्यादा केसेस अब नहीं आते, पहले बहुत आते थे, लगभग 1000 से 2000 केसेस के बीच में हर साल रिपोर्ट होते हैं, बट इसकी केस फेटैलिटी बहुत हाई है, मतलब डेथ्स बहुत होती है। अगर जो केस जिसको हो जाए उसमें करीब 10 से 15% लोगों में डेथ्स होती हैं, पर इसके लिए खुशखबरी यह है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, और ये अवेलेबल वैक्सीन इन सब राज्यों में जो प्रभावित राज्य हैं उसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर बच्चों को दी जाती हैं 2 डोजेस, और जहां एडल्ट केसेस हैं वहां पे एडल्ट वैक्सीनेशन भी एक प्रोजेक्ट मोड में हम लोग करते हैं।
1: तो ये सारे एडल्ट्स को भी लगाई जा रही है, लेकिन सबको नहीं, आप बोल रहे हैं जी, जी,
0: जहां पे एडल्ट्स में है, जो यूजुअली क्या होता है जहां पे चाइल्डहुड में वैक्सीन हम 2 डोज दे रहे हैं उसमें देखने में ये आता है कि कुछ जगहों पे 15 साल के ऊपर के लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन दिखने लगता है, तो फिर हम वहां पे एक कैंपेन मोड में एडल्ट वैक्सीनेशन भी करते हैं। तो ये सारे प्रयास हैं जो इन सब बीमारियों के अराउंड हमारे चलते हैं, और इसमें जो है हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के और सचिव समय समय पे हमारा रिव्यू करते हैं, स्टेट्स का रिव्यू करते हैं, और ये सारी एक्टिविटीज पे ध्यान रखते हुए हम

0: आगे बढ़ रहे हैं, पर इसमें जनता का सहयोग, जनभागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं कि जब तक आप खुद प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, घर के अंदर पानी भरा हुआ है, बहुत मुश्किल है कि सरकार आपके घर तक पहुंच के पानी ड्रेन करे। तो हमारी सबसे फिर से अपील है कि बहुत ही जरूरी है कि अपने घर के चारों तरफ और पर्सनल प्रिकॉशंस, जनभागीदारी और जागरूकता, ये एक दो चीजों का बहुत इसमें सहयोग हम लोगों को, सरकार को चाहिए रहता है।
1: जी, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। बहुत सारे, बहुत विस्तार से आपने बताया कि सारी बीमारियों को एक एक लेकर और किस तरह से हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमें पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। लेकिन यही, जैसा आपने कहा कि जन भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, उसके बिना इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो यही इस कार्यक्रम का भी आज उद्देश्य है कि आप इस चीज को समझें कि किस तरह से हम इसमें अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं और किस तरह से बचाव या उपचार की दिशा में हम भी अपना एक कदम बढ़ाकर सरकार को सहयोग कर सकते हैं। एक मैसेज में आया है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, पर जो हम वैक्सीन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, टाइफाइड की वैक्सीन के बारे में आपने जो बात की थी, उससे रिलेटेड ये मेरे पास प्रश्न है। इन्होंने लिखा है कि मैं 46 इयर्स की फीमेल हूं और मुझे टाइफाइड जब हुआ था फर्स्ट टाइम तो मैं 43 इयर्स की थी और आज मुझे, और 45 इयर्स पे मुझे दोबारा हुआ, यानी 2 साल बाद इनको दोबारा हुआ और दोनों बार डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया कि आप वैक्सीन लगाएं। ही ऑल्सो आस्क्ड टू टेक अ 19-डे इंजेक्शन कोर्स। शुड आई टेक वैक्सीन एंड एनी सच इंजेक्शंस? इफ नो देन हाउ टू प्रिवेंट फ्यूचर रीअकरेंस? ये उन्होंने जानना चाहे।
2: देखिए, 45 साल जो हमने उम्र बताया था ना, वो कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि मतलब 45 से अगर आप ऊपर हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लगती, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। 45 के ऊपर भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, पर यूजुअली क्या होता है कि 45 के बाद में इम्यून रेस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जब हम किसी को वैक्सीन लगाते हैं तो हमारा मोटिव यह होता है कि उस इन्फेक्टिव पॉजिटिव एजेंट जो होता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक स्ट्रांग इम्यून रेस्पॉन्स शो करे। तो 45 के बाद में क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन होती है तो उसका इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है। पर लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको रिकरेंट टाइफाइड फीवर हो रहा है, टाइफाइड डायग्नोज हो रहा है, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है।
1: अच्छा, तो लगवा
2: और ये जो 19 इंजेक्शंस, आई डोंट थिंक सो कि या तो ऐसा होगा कि ये मलेरिया अभी टाइफाइड से पीड़ित होंगी तो उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो टाइफाइड के इंजेक्शंस जो होते हैं, टाइफाइड के लिए जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं उसको यूज करने के लिए वो बोल रहे होंगे, पर वैक्सीन 19 डेज तक नहीं लगती कभी भी।
1: जी जी, वैक्सीन वही है जो आपने अभी विस्तार से बताया,
2: वो 45 के बाद में भी लगा सकते हैं लेकिन उसका जो रेस्पॉन्स होता है थोड़ा पुअर होता है, इसलिए उसको डिस्करेज करते हैं, अदरवाइज किसी में इंडिकेटेड है तो उसको लगा सकते हैं।
1: तो जैसे इनको बार बार हो रहा है टाइफाइड, तो क्या रीजन है कि किसी को वही बीमारी बार बार होती है? क्या इम्यूनिटी लो होती है या कोई उनके प्रिवेंशन की जो है सही तरीके से ये सावधानियां नहीं ले रही
2: हैं? पीछे मैं आपको एक बताता हूँ, एक टाइफाइड मैरी करके कंसेप्ट फेमस है पूरे वर्ल्ड में, एक टाइफाइड मैरी टर्म हम यूज करते हैं मेडिकल लिटरेचर में। बेसिकली मैरी एक फीमेल का नाम था जो मुझे जितना याद है कि न्यूयॉर्क में एक हाउसमेड थी, तो उसको कभी भी टाइफाइड नहीं होता था और उस वो जिस जिस घर में भी खाना बनाती थी ना उसके पूरे फैमिली मेंबर्स को टाइफाइड हो जाता था। तो जब उसके बारे में स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि वो जो लेडी थी, जो हाउसमेड थी, वो टाइफाइड कैरियर थी। तो उस टाइफाइड कैरियर से क्या होता था कि उसके थ्रू टाइफाइड पूरे फैमिली में फैल जाता था। तो हो सकता है कि ये टाइफाइड कैरियर हो और जब भी इनकी इम्यूनिटी डाउन होती है तो वो टाइफाइड इनके बॉडी में अपियर हो जाता है। तो हो सकता है कि ये टाइफाइड कैरियर हो।
1: तो जो कैरियर होते हैं थ्रू आउट रहते हैं जिंदगी भर
2: उनको कैरियर? कैरियर यूजली क्या होता है कि जो टाइफाइड का कैरियर होता है गॉल ब्लैडर में जाके बैठता है। तो इनका स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, इस तरह का कल्चर हम करा के देखते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो पहले उसको ट्रीट करते हैं। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई कैरियर होता है तो उसको गॉल ब्लैडर सर्जरी कराने की भी एडवाइस करते हैं।
1: तो ये सारी चीजें भी ये टेस्ट करा सकते हैं और हो सकता है इस तरह की कोई बात हो आपके साथ। एक और दिमाग में प्रश्न आ रहा है डॉक्टर तनु, कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत वेदर हम देख रहे हैं कि शिफ्टिंग भी हो रही है, सर्दी गर्मी बारिश, तो क्या इसका भी असर होता है?
0: जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली अगर हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की बात करें तो, क्योंकि मच्छर का एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से रिश्ता होता है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में, लाइक 20 से 25 या 30 डिग्री तक, या ह्यूमिडिटी लेवल आपका 60-70% के करीब है, उसमें ये मच्छर की जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी हो जाती है और ये जल्दी जल्दी पनपना शुरू करते हैं। तो अब हाल में देखने में ये आया है कि जो बहुत हमारे ठंडे रीजन्स हैं वहां पे भी हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगा है या ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी है, तो वहां पे भी ये बीमारियां अब होने लगी हैं। जैसे उत्तराखंड का एरिया ले लीजिए, तो ये शिमला का ऐसे हिमाचल का एरिया ले लीजिए या कुछ नॉर्थ ईस्ट का एरिया ले लीजिए जहां पे कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी बट होने लगी हैं जहां पे ठंडा टेम्परेचर

0: दूसरा इस साल के लिए मैं खास करके बताना चाहूंगी, जैसे कि 2023-24 में भी एक ग्लोबल वार्निंग आई थी कि एल नीनो आएगा. आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि एल नीनो इस साल भी प्रक्रिया काफी स्ट्रांग एल नीनो का इफेक्ट आएगा. उसमें क्या होता है, यूजुअली जो साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया की तरफ का रीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, बारिश थोड़ी कम होती है. तो बारिश थोड़ी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, मानसून डेफिसिट होता है, तो छोटे छोटे जगहों पर पानी भरने लगता है. क्योंकि जैसे अगर पानी बहता हुआ है तो उसका लार्वा तो नहीं पनप पाएगा, लेकिन ठहर गया है पानी तो लार्वा पनपने का टाइम मिल जाता है. दूसरा, पानी की जहां जहां पे कमी होती है या सप्लाई में थोड़ा इश्यू आता है, वहां पे लोग स्टोर करते हैं वाटर को, और जब स्टोर करते हैं वाटर को और उसे ढक के प्रॉपरली नहीं रखते हैं, उसके अंदर भी ब्रीडिंग देखी जाती है कि मच्छर ब्रीड करने लगते हैं. और क्योंकि वो पानी तो जरूरी है, आपको रखना है, तो इस सीजन में ये बहुत जरूरी है कि स्टोर करके अगर पानी कोई रख रहा है तो उसको ढक के रखें, चाहे वो पीने के लिए हो चाहे नहाने के लिए हो. अगर स्टोर करने का पानी है तो उसे ढक के रखें, नहीं है तो उसमें एक दवाई आती है वो भी डाली जा सकती है. लेकिन बेस्ट यह है कि आप उसको ढक के रखें और अपने आसपास कहीं भी देखें पानी इकट्ठा है तो उसको स्क्रब करके. एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो लार्वा होता है ना, आप पानी हटा देते हैं, जैसे आपने सपोजिंग बर्ड फीड है, कुछ लोग चिड़ियों को करने के लिए रखते हैं एक ट्रे, पानी निकाल देते हैं फिर सीधा कर देते हैं. अब उसके अंदर जब पानी भरेगा तो अगर उसके अंदर एग चिपका हुआ रह गया वो फिर से मस्किटो बन जाएगा. तो जिसको कहते हैं स्क्रब ड्राई, कस कस के ड्राई करना है और उल्टा करके रखना है ताकि उसके अंदर दोबारा पानी ना भरे. तो ये प्रक्रिया आप लोग अपने घर में, और अगर हफ्ता में एक बार आप एक ड्राइंग डे करके मनाएं और एक घंटा या दो घंटा अपना टाइम दें अपने घर और अपने घर के आसपास देख लें कि कहीं पानी तो जमा नहीं है. और खास के ऊपर पानी की टंकियां जो आपकी हैं, कई बार बंदर आता है उसकी लिड खोल जाता है, कई महीनों हम भूल जाते हैं जाना, वहां पे बहुत ब्रीडिंग मिलती है. तो वो सब चीजें
1: टैंक्स की सफाई,
0: जी टैंक्स की सफाई, लेकिन वो स्क्रब ड्राई करना है. और अगर बड़े टैंक्स हैं तो उसके ऊपर जाली से ढक के रखना है ताकि मच्छर ब्रीड ना करें, और कर जाएं तो एटलीस्ट बाहर आके किसी को बाइट ना कर सके.
1: जी, बहुत सारी बातें हमने की कार्यक्रम में, समय कम बचा है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये जरूर जानना चाहूंगी डॉक्टर विष्णु की कौन सी ऐसी अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जब ऐसा लगे किसी भी पेशेंट को या मरीज को कि मुझे इमीडिएटली अब जाना चाहिए डॉक्टर को दिखाने, कई बार इसमें भी डिले हो जाता है.
2: देखिए, अभी डॉक्टर तनु ने भी बताया था कि जैसे डेंगू फीवर की अगर हम बात करें तो डेंगू फीवर में यूजली क्या होता है कि तीसरे चौथे दिन बुखार चला जाता है. तो जैसे ही बुखार जाता है मरीज सोचता है मैं ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है. वो जो फेस होता है वो क्रिटिकल फेज होता है. तो आप ये देखिए कि डेंगू फीवर में आपको चौथे पांचवें दिन अगर बुखार चला गया है लेकिन उसके साथ अचानक से आपकी स्किन, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए, या आपके पेट में दर्द होने लगे, है ना, या आपको वोमिटिंग होए, या आपका मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो जाए, तो ये डेंजर है. ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है. दूसरा, जितने भी हमने मौसमी बीमारियां बात करी उन सब में एक फीवर प्रोमिनेंट फीचर है. तो अगर आपका फीवर 3 दिन से ज्यादा है तो आपको उस केस में कभी भी आपको रिस्क नहीं लेनी है, तुरंत डॉक्टर से मिलना है और जो जरूरत की जांचें होती है वो करवाना है. तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कभी भी ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन खरीद के ना खाएं. कोई भी मेडिसिन हो, इवन पैरासिटामोल भी है तो वो किसी डॉक्टर की सलाह से ही ले. अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, अदरवाइज पैरासिटामोल के अलावा कोई भी दवाई आप डॉक्टर से पूछे बिना ना लें. और जो डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक या जो भी कोर्स दिया है उसको बीच में अधूरा ना छोड़ें. अगर आपको 7 दिन के लिए दिया है तो 7 दिन का कोर्स पूरा करें. कई बार क्या होता है कि तीसरे चौथे दिन हमें आराम पड़ जाता है तो हम उसका कोर्स छोड़ देते हैं. तो उससे क्या होता है कि अगली बार वही दवाई आपकी बॉडी पे असर नहीं करती, रेसिस्टेंस डेवलप कर लेती है. तो ये चीज आपको बिल्कुल हमेशा ध्यान रखनी चाहिए.
1: जी, तो बहुत सारी बातें आज इस कार्यक्रम में हमने जानी, और अब समय इतना ही है कि मैं धन्यवाद दूं अपने सभी साथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, हमारे साथ जुड़े, और हमारे गेस्ट का जिन्होंने समय निकालकर यहां आए हैं, इतनी ढेर सारी जानकारी आप सब तक पहुंचाई है. तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे डॉक्टर विष्णु गुप्ता, आप सीएमओ एट सीजीएचएस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में. डॉक्टर तनु जैन, आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टरबॉर्न डिजीज कंट्रोल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नई दिल्ली में. और विषय रहा हमारा इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मॉनसून सीजन. आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि आप यहां
0: आए. बहुत बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
1: और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार.
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम

0: किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: कोयल से तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

पेशे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वास्थ्य जीवन शैली अपनानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जरथॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सोदोव बख्तियार ओदी लोविच आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी

भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। तो ये तो थे अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानी हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: आए हाय,
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दोस्तों हम आपको बता दें कि 4:15 से आप सुनेंगे, 4:15 से सुनेंगे रेनबो जीनियस, और आप हमारी जो फोन कॉल हैं उस पर, आप फोन लाइंस हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर रहेंगे 2342-1080, और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप एसटीडी कोड मिला सकते हैं 011। मैं नंबर एक बार आपको फिर बता दूं, 2342-1080। और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ये लम्हे। आकाशवाणी FM रेनबो आप सुन रहे हैं 102.6 पर। 4:05 से आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे, और 4:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो जीनियस। और रेनबो जीनियस में आप सीधे डायल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप STD कोड लगाना ना भूलें, जो कि है 011।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए जीवन शैली में मामूली बदलाव करने से बहुत लाभ मिल सकता है। जाने जीवन शैली बदलाव चेतन से इस लम्हे प्रोग्राम में। वर्तमान समय में बहुत से लोग अनिद्रा, रात में नींद ना आना, बार बार आंख खुलना, नींद के दौरान बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अच्छी नींद आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रात में ठीक से सो नहीं पाते या नींद पूरी नहीं होती, तो इससे न सिर्फ पूरे दिन थका हुआ महसूस करते, बल्कि इससे कई स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम भी बढ़ता है। एक अच्छी और पर्याप्त नींद आपको तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करवाती है। खराब नींद के लिए आपकी जीवन शैली की कई गलत आदतें जिम्मेदार हो सकती है, जो आपको भरपूर और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लाने से रोकती है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि के सामने अधिक समय बिताना, एक्सरसाइज न करना, संतुलित आहार न लेना और रात को देर से सोना खराब नींद के कुछ आम कारण है। अब सवाल यह है कि नींद की गुणवत्ता से सुधार करने और अनिद्रा, खराब और बेचैन जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप

क्या कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं जीवन शैली में बदलाव और कुछ अच्छी आदतों को दैनिक रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जीवन शैली बदलाव। सुबह कुछ समय धूप में बिताएं। अच्छी नींद के लिए कोशिश करें कि अपने दिन की शुरुआत कुछ समय धूप में बिताकर करें। ऐसे करने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ावा देने में मदद मिलती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। पैरों को मालिश करें। अगर रात को सोने से 30 मिनट पहले आप घी गर्म करके इससे पैरों और तलवों की मालिश करते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। डिनर में प्रोटीन रिच फूड्स खाएं। ये नींद की गुणवत्ता में सुधार और अच्छी नींद को बढ़ावा देती है, साथ ही हार्मोन्स को संतुलित रखती है। सुबह के समय रात भर पानी में भीगे हुए 4 से 5 बादाम जरूर खाएं, क्योंकि इनमें जिंक, मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं जो नींद को बढ़ावा देते हैं। आप शाम को स्नैक्स के तौर पर शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। ये शरीर में मेलेटोनिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है और एनर्जी बढ़ाता है। आप सुबह भीगे या सूखे अंजीर का सेवन कर सकते हैं तो ये अच्छी नींद को बढ़ावा देते हैं और हार्मोन्स को संतुलन में रखते हैं। शाम के बाद चाय या कॉफी न पिए। इनमें कैफीन होता है जो आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और बेचैन नींद का कारण बनता है। नियमित एक्सरसाइज करने से रात में अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है, लेकिन रात में या सोने से पहले एक्सरसाइज करने से बचें। यह शरीर को शांत और स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपको रात को सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन का पाचन और चयापचय आसानी से हो जाता है। डिनर के बाद कैमोमिली टी पिए। इससे नींद को बढ़ावा देने में और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। तनाव और चिंता की भावना कम होती है, मन शांत रहता है और नींद अच्छी आती है। जीवन शैली में इन सरल बदलाव के साथ आप अनिद्रा या नींद न आने की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए अगर अच्छी नींद चाहते हैं तो इन्हें रूटीन का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लेना। नींद हमारे मन और शरीर के उपचार के साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की माने तो नींद सबसे अच्छा मेडिटेशन है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक बेहतर और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कैसे कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर और अच्छी नींद ले सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक कहते हैं अपने दैनिक जीवन में हम रोजाना ऐसे कई काम करते हैं जो हमारी नींद में खलल का कारण बनते हैं, और बेहतर नींद के लिए आपको इनसे बचने की जरूरत है। नींद शक्तिशाली है, जादुई है, उपचारात्मक है और डिटॉक्सिफाइंग है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस सब के अलावा भी नींद के बहुत लाभ है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक गहरी और पर्याप्त नींद लेते हैं। परेशान, हल्की और अनुचित नींद आपके उपचार में देरी का कारण बन सकती है। यह आपको फोकस और आपकी कार्य क्षमता को कम कर सकती है। सिर्फ उतना ही नहीं, नींद की कमी आपके पाचन में गड़बड़ कर सकती है, जिसे आप ज्यादा चिंतित महसूस कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको कम आराम का अनुभव हो सकता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी नींद का ध्यान रखें, क्योंकि यह निश्चित रूप से हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान कर सकती है। एक्सपर्ट्स की मानो तो नींद में खलल का कारण कई बार हमारी खुद की गलतियां होती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे वह आदत बन जाती है और यह आदत एक दिन बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी आदतों को बदले और खुद को सेहतमंद बनाने की ओर एक कदम उठाएं। यहाँ हम आपको एक्सपर्ट्स द्वारा बताए कुछ उन खराब आदतों के बारे में बता रहे हैं जिसे हम जाने अनजाने जरूर करते हैं। इन बातों को जानने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप इसमें सुधार कर और अच्छी नींद पाने की कोशिश करेंगे। कैफीन का सेवन सीमित करें।
कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और जो लोग इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं यह उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है। यह बात सही है कि कॉफीन मूड को बेहतर करती है, मगर अत्यधिक

0: हानिकारक भी है। दोपहर के बाद कॉफी आपके नींद में खलल डाल सकती है, इसीलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी के आदि हैं, तो आपको अपने कॉफी और चाय के सेवन को सीमित करने की जरूरत है। एक्सरसाइज शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज हमेशा सुबह के समय करना ज्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि हल्के व्यायाम आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन हैवी वर्कआउट करना सही नहीं है। दरअसल शाम का समय हमारे लिए आराम करने के लिए है। शाम के समय भारी व्यायाम से अनिद्रा और नींद की अन्य समस्याएं हो सकती है, क्योंकि व्यायाम हमें जागरूक और ऊर्जावान महसूस कराता है। अधिक ऊर्जा शारीरिक और मानसिक रूप से हमें अधिक सक्रिय बनाती है, जिससे हमारे मस्तिष्क को सोते समय बंद करना मुश्किल हो जाता है। भोजन हमेशा समय से करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने का भी एक समय निर्धारित होता है। जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनुसार हमारा शरीर नहीं करता है, इसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से सुबह ब्रेकफास्ट और लंच टाइम से करना चाहिए, उसी तरह डिनर भी समय पर करना चाहिए, क्योंकि इस पर हमारी नींद की क्वालिटी निर्भर करती है। सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन अग्नि तेज नहीं होती, इसीलिए रात के खाने के लिए कुछ हल्की और सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के एक दो घंटे के भीतर भोजन करना सबसे अच्छा है। आजकल लोग सोने जाने से पहले ज्यादा समय अपने फोन पर बिताते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। इससे न सिर्फ हमारी नींद खराब होती है, बल्कि पूरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए सोने से एक घंटे पहले गैजेट्स का इस्तेमाल से बचना सबसे अच्छा है। जो पूरे दिन लगातार काम करने के बाद आपके दिमाग को आराम करने में मदद करता है, ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरेगी। सुबह की धूप हमें विटामिन डी देता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, साथ ही नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। सुबह या शाम के समय थोड़ी धूप लेना आपको सोते समय बेहतर नींद लेने में मदद करता है। ये आपके शरीर के दैनिक सर्कैडियन रिदम को सेट करने में आपकी मदद करके ऐसा करता है, तो ऐसे में धूप में थोड़ा समय जरूर बिताए। वेल डियर फ्रेंड्स, I have given all information to improve the quality of your sleep. Please follow a routine and exclude bad habits. With this wonderful information, this is your RJ Chetan signing off. Bye.
1: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम रेनबो जीनियस लेकर आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा कि रेनबो जीनियस में हमें भी जुड़ना है, हमें भी जीतना है और हमें रेनबो जीनियस बनना है। तो रेनबो जीनियस बनने के लिए आपको फोन डायल करना पड़ेगा, हमारे साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और हम आपसे सवाल पूछेंगे। अगर आपने लगातार 5 सवालों का सही जवाब दिया तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस। और रेनबो जीनियस बनने के लिए आपको फोन डायल करना पड़ेगा। तो हमारा फोन नंबर नोट कीजिए, हमारा फोन नंबर है 2342108 और अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो आप एसटीडी कोड लगाना मत भूलिएगा। हमारा एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर आपको मैं बता रहा हूँ, नंबर हमारा है 0

11 एसटीडी कोड है 2342 1080, ये नंबर है, ये आप डायल कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपको सुनवा रहा हूं एक खूबसूरत गीत और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कॉलर्स आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, ये है आकाशवाणी FM रेनबो और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो जीनियस। हमारे साथ हमारे एक पहले कॉलर कनेक्ट हो गए हैं, चलिए उनके साथ कनेक्ट करते हैं और जानते हैं कौन बोल रहे हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेनबो जीनियस में। कौन सा आप बोल रहे हैं? हाँ जी, रमेश जी, क्या करते हैं आप?
2: साधारण सा सेल्समैन होते।
1: अरे, साधारण सेल्समैन कभी साधारण नहीं होते हैं। सेल्समैन जो होता है कुछ भी बेच सकता है ना, तो उसकी क्वालिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल,
1: कोई भी अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीजों को जो होता है और कस्टमर को जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, वही सेल्समैन है, ट्रू सेल्समैन। तो सर आपसे जी,
2: मैं अपने आपको योग्य नहीं समझता, तो जो प्रबुण दिया सब ठीक है
1: जी। बिल्कुल, तो रमेश जी रेनबो जीनियस में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे?
2: मुझे इसकी नियम मालूम।
1: हाँ ठीक है, मैं आपसे पांच सवाल पूछूंगा, अगर आपने पांचों का सही जवाब दिया तो आप रेनबो जीनियस बन जाएंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूँ कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था?
2: मोहनदास करमचंद गांधी।
1: चलिए, पहला बिल्कुल सही आपने बताया। और

0: और दूसरा मैं पूछता हूँ कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था?
1: पहला विश्व युद्ध कब हुआ था?
0: हाँ,
1: जहाँ तक मुझे ध्यान आता है साहब जी, मेरा ख्याल है कि 1914 में हुआ था सर, 14 या 18 में।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा सवाल है सर, थोड़ा रेडियो को क्योंकि थोड़ा दूर कर देंगे क्योंकि वो डिस्टरबेंस हो रहा है, रेडियो शायद आपका ऑन है।
1: जी एक सेकंड सर, हो गया सर जी,
0: धन्यवाद। मैं और आपसे तीसरा सवाल जो है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
1: पृथ्वी का सबसे बड़ा
0: जी
1: मैंने पढ़ा प्रशांत महासागर,
0: प्रशांत महासागर बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने तीन सवाल बिल्कुल सही जवाब दिया है।
1: ये मैंने सातवीं क्लास में पढ़ा था जी।
0: अरे क्या बात है, आपकी मेमोरी भी मतलब बिल्कुल अभी तक शार्प है, बहुत बढ़िया। और चौथा सवाल जो है वो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं?
1: कुल भारत में राज्य है 30, जिसमें से 4 या 5 केंद्र शासित
0: हैं। नहीं नहीं राज्य पूछे हैं,
1: भारत में कितने राज्य हैं?
0: हाँ।
1: तो राज्य तो देखिए 4 तो इसमें वो है जी,
0: नहीं स्टेट्स पूछ रहा हूँ आपसे, स्टेट्स कितनी है टोटल इंडिया में, कितनी स्टेट्स हैं?
1: सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो संपूर्ण राज्य जो होते हैं वो 26 हैं, बाकी 4 केंद्र शासित प्रदेश।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं
1: नहीं टोटल
0: 30 है, 30 नहीं है टोटल, 28 हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं,
1: वो केंद्र शासित प्रदेश।
0: हाँ 28 स्टेट्स हैं, पहले 25 थे, 3 और स्टेट्स हमारे ऐड हुए हैं। और मैं
1: हमारे टाइम पे थी
0: नहीं हाँ वो पहले था, लेकिन अभी क्या 3 स्टेट्स और ऐड हुए हैं
1: जी, गुस्ताखी माफ,
0: कोई बात नहीं। और 29वां अभी तेलंगाना ऐड हुआ है
1: जी जी,
0: ठीक है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच रमेश जी,
1: धन्यवाद, बहुत बहुत
0: थैंक यू। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो जीनियस। दोस्तों आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ, और आपको डायल करना है हमारा नंबर, हमारा नंबर है 2342108 और अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो आपको एसटीडी कोड लगाना होगा, एसटीडी कोड है 011। और हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे और आपने 5 सवालों का अगर सही जवाब दिया तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस। फिलहाल आपके लिए एक ब्यूटीफुल ट्रैक और उसके बाद हमारे साथ हमारे एक और लिसनर कनेक्ट करेंगे।

0: खुशियां हम भी सवार लें। हमारे साथ जो हैं हमारे एक लिसनर जुड़ गए हैं, तो चलिए उनके साथ कनेक्ट करते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।
1: नमस्कार सर।
0: कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: जी मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ।
0: पंकज जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं मनोहरपुर पश्चिमी सिंहभूम झारखंड से
0: हूँ। अच्छा, झारखंड से मनोहरपुर से बोल रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रेनबो जीनियस में? पहले खेले हैं?
1: जी हाँ, एक बार मैंने बहुत सारे
0: पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो चलिए मैं आपसे पांच सवाल पूछूंगा, और अगर आपने पांचों सवाल का सही जवाब दिया तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस।
1: ठीक है,
0: तो शुरुआत करें।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं आपसे, देखिए मुर्गे ने भी पीछे हमारा हूटर दे दिया, बांग दे रहा है। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
1: विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सर गोबी
0: है। नहीं नहीं, मतलब सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का।
1: नहीं पता सर।
0: सहारा रेगिस्तान। चलिए थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर सुनिए एफएम रेनबो 102.6 पर आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों, और आपको डायल करना है हमारा नंबर। हमारा नंबर है 2342108 0। जी हाँ, 2342108 0। और अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो आप एसटीडी कोड मिला सकते हैं। एसटीडी कोड है 011। हमारे एक और लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
2: जी रामधारी बात कर रहा हूँ।
0: रामधारी जी कहाँ से बोल रहे हैं?
2: ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है रामधारी जी, हरियाणा से बोल रहे हैं।
2: जी बिल्कुल।
0: तो हरियाणा का क्या सबसे बढ़िया है? वैसे तो सारे हांसी का मान लीजिए,
2: हांसी का पेड़ा।
0: पेड़ा मथुरा के भी पेड़े फेमस है,
2: लेकिन वो टेस्ट जो हांसी के पेड़े में है वो मथुरा वाले में नहीं होगा सर।
0: क्या बात है, देसी घी में खाना है और
2: दूध दही का खाना देसा में देश हरियाणा।
0: क्या बात है। तो क्या करते हैं सर रामधारी जी?
2: मैं हरियाणा पुलिस में जॉब कर रहा हूँ एज ए कॉन्स्टेबल।
0: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आप पहली बार कर रहे हैं या पहले भी पार्टिसिपेट?
2: मैं सर कंटिन्यू में पार्टिसिपेंट रहता हूँ इस प्रोग्राम में।
0: तो शुरुआत करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
2: एरिया में सर या जनसंख्या में?
0: मतलब छोटा राज्य एरिया में भी वैसे भी जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य?
2: जनसंख्या में सिक्किम है और क्षेत्रफल में गोवा है।
0: बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, गोवा है छोटा राज्य जो है। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछता हूं कि सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है?
2: सबसे तेज
0: दौड़ने वाला?
2: पैंथर, चीता।
0: चीता, बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं?
2: 206, 206।
0: क्या बात है, तीन सवाल और तीनों का सटीक जवाब दिया है आपने। और मैं एक और चीज पूछूं आपसे, रक्त का रंग लाल क्यों होता है?
2: हीमोग्लोबिन के कारण।
0: बिल्कुल सही जवाब, लगता है रेनबो जीनियस बनकर ही छोड़ेंगे हैं। तो और एक और आपसे पूछता हूं सवाल, संविधान का संरक्षण कौन करता है? संविधान का संरक्षक कौन है?
2: सुप्रीम कोर्ट।
0: बिल्कुल सही जवाब, आप रेनबो जीनियस बन गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो।
2: थैंक यू सर।
0: तो आप

0: के लिए मैं ये सॉन्ग चला रहा हूं और आपको बहुत बहुत मुबारक।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पहले रेनबो जीनियस रामधारी सिंह जी, और जिन्होंने हरियाणा से ये हमारे साथ कनेक्ट किया हांसी से, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और आपके लिए गीत प्यारा सा चला रहा हूं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं रेनबो जीनियस में। डायल करना है आपको नंबर 2342-10080।
2: कुछ हो गया है।

0: दोस्तों कुछ तो हुआ है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी रेनबो जीनियस बने और कुछ हो तो आप हमें डायल कर सकते हैं हमारे लैंडलाइन नंबर पर। हमारा लैंडलाइन नंबर है 01123421080। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो 011 आप डायल कीजिए, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप डायरेक्ट डायल कर सकते हैं लैंडलाइन नंबर से 2342 1080। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ हम रेनबो जीनियस ये गेम खेलेंगे।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है रेनबो जीनियस अल्फा जेन। जी हाँ, आज का जो अल्फा जेन है उसमें हम रेनबो जीनियस प्रोग्राम के अंतर्गत, अल्फा जेन के अंतर्गत हम रेनबो जीनियस जो है गेम शो आप लगा लीजिए या क्विज शो लगा लीजिए, क्विज शो है और उसके अंदर हम सवाल पूछते हैं, पांच सवाल पूछते हैं और जो सही जवाब देता है पांचों का तो वो बन जाता है रेनबो जीनियस। हमारे एक रेनबो जीनियस बन चुके हैं राम दिनकर जी, राम सिंह दिनकर जी हांसी से। अब देखते हैं कि अगला रेनबो जीनियस हमारे कौन बनते हैं और कौन हमारे साथ लिसनर इस वक्त कनेक्ट हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो।
3: हेलो।
2: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार।
3: नमस्ते सर, मैं जिया बोल रही हूँ दिल्ली से।
2: जिया दिल्ली से? ये आपके नाम पे ही गाना बना हुआ है, जिया जले दिल जले। चलिए कोई नहीं जिया, आप क्या करती हैं जिया?
3: सर अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ।
2: ग्रेजुएशन कर रही हैं, कहाँ से कर रही हैं?
3: दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
2: अच्छा, किस उसमें स्ट्रीम में?
3: बीए प्रोग्राम।
2: तो जिया आप रेडी हैं हमारे साथ रेनबो जीनियस में पार्टिसिपेट करने के लिए क्विज शो में? चलिए मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है?
3: वंदे मातरम।
2: बहुत बढ़िया। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है?
3: इसरो का बेंगलुरु में।
2: बहुत बढ़िया। और तीसरा सवाल है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है?
3: आई थिंक ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन।
2: आपने दो उसमें सही बताए, ऑटोमेटेड
3: ट्रांसफर मशीन
2: नहीं, टेलर मशीन। चलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि आपने तीसरा का भी सही जवाब दिया है। और एक आप सिर्फ दो प्रश्नों के अगर आपने उत्तर सही दिए तो आप रेनबो जीनियस बन जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
3: 5 जून।
2: अरे क्या बात है, पूरी तैयारी करके आई हुई है। ओके, और आपसे मैं एक और पूछ लेता हूं कि कौन सा पूछा जाए आपसे, थोड़ा सा टफ पूछा जाए, इजी पूछा जाए?
3: सर आप कुछ भी पूछ लीजिए।
2: अच्छा कुछ भी पूछ ले,
3: इजी होगा वरना कठिन होगा।
2: ओके ओके ओके ओके, चलो आप मतलब तैयारी पूरी है आपकी। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला जो देश है कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से कंट्री की है?
3: सर इंडिया की ही तो है।
2: नहीं आप गलत बता रहे हैं, इंडिया की है। आप अपने आप को मतलब इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं हमारी कंट्री को? हमारे कंट्री से और भी हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, चीन है। खैर आपने अच्छा ट्राई किया, चाइना।
3: जी सर।
2: ठीक है, तो चाइना अभी है और भारत दूसरे नंबर पे आता है।
3: ओके सर।
2: तो ठीक है, तो आपने लेकिन अच्छा ट्राई किया, चार सवालों जो थे बिल्कुल सही दिए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, चलिए उनसे कनेक्ट करते हैं। हेलो।
4: हेलो नमस्कार।
2: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
4: हाँ केशव चक्रवर्ती, अगरतला से।
2: केशव जी क्या बात है, अगरतला से। कैसा, पहले मैं मौसम पूछना चाहूंगा, मौसम कैसा है वहाँ?
4: ये अच्छे है, थोड़ा थोड़ा रेन हो रहा है,
2: थोड़ा थोड़ा रेनफॉल है।
4: आपने
2: कॉल किया मेरे को, और अच्छा हो गया मेरा। तो अगरतला

0: से आप बोल रहे हैं? अगरतला का क्या फेमस है?
1: एसएमएस।
0: ये क्या चीज है सर?
1: एसएमएस का फुल फॉर्म।
0: अच्छा, एसएमएस का फुल फॉर्म नहीं, वहां की कुछ फेमस होता है ना, फूड है, ये है, घूमने के लिए है, कोई ऐसी बिल्डिंग है, कुछ ऐसा क्या मतलब अगरतला में क्या, अगर कोई आए मैं ये आऊं घूमने के लिए तो क्या वहां पे है, जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी पता लगेगा कि अगरतला में ये है।
1: और राइस इज द स्टेबल फूड विद फिश, राइस एंड फिश।
0: ओके, राइस एंड फिश, दैट्स नाइस। तो चक्रवर्ती साहब क्या करते हैं आप?
1: मुझे थोड़ा सा, आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स, आई कंटिन्यूअली टीचिंग देम।
0: ओके, तो आप टीचर हैं, बहुत बढ़िया। और मैं आपसे सवाल पूछूंगा पांच, और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप रेडियो जीनियस बन जाएंगे।
1: ओके सर, थैंक।
0: आपने पहले पार्टिसिपेट किया हुआ सर, पहले खेला है हमारे साथ ये?
1: नहीं सर, आई हैव ऑलरेडी मेनी टाइम्स आई हैव प्लेड एंड आई हैव आल्सो वन फ्यू टाइम्स जीनियस।
0: ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे पूछता हूँ सवाल का, हमारा सही सवाल भी था और सही जवाब भी आपने दिया। और चलिए अगला मैं आपसे पूछता हूँ कि नोबल प्राइज किस देश द्वारा दिया जाता है?
1: फ्रॉम इंग्लैंड।
0: ओके, बहुत बढ़िया, तीन सवाल बिल्कुल सही जवाब। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
1: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
0: ना ना ना ना ना, सही।
1: भारत का पहले
0: पहले पहले मैं चलिए आपको हिंट देता हूँ, ये भी टीचर थे।
1: भारत के प्रथम भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये तो लगता है राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य, आई थिंक।
0: नहीं, रॉन्ग।
1: इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर।
0: रॉन्ग, आप थोड़ा सा बीच में जो है सही जा रहे थे ट्रैक पे, आप एकदम से जो आपने बीच में दिया ना वो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आई थिंक सर।
0: मैंने आपको हिंट भी दिया कि टीचर थे, ये भी टीचर थे, टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं इनके उस पे। तो एनी हाउ, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, थैंक यू सो मच केशव चक्रवर्ती जी, थैंक यू सो मच अग्रता से आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये हमारे साथ अगरतला से केशव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए थे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपको डायल करना है 2342-1080। फिलहाल आपके लिए एक म्यूजिकल ब्रेक, और उससे पहले ये गाना आप सुनिए, उसके बाद हम आपसे और बातें करेंगे।

0: एप्लीकेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: से कनेक्ट करते हैं। कौन है हमारे साथ? हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेनबो जीनियस में। कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: जी धन्यवाद, मैं उमेश बात कर रहा हूँ हरियाणा से।
0: उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी क्या करते हैं आप?
1: मैं हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पे तैनात हूँ सर।
0: चलिए बहुत बढ़िया। और जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं आप?
1: जी रखते हैं थोड़ी बहुत।
0: थोड़ी बहुत, चलिए बहुत बढ़िया। और आपको रूल पता ही होगा, मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा और अगर आपने सही जवाब दिया तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस।
1: जी।
0: तो मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूं कि जनगण मन के रचयिता कौन थे?
1: रविंद्रनाथ टैगोर।
0: बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
1: संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में।
0: न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही जवाब। और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है?
1: जी रसिया या रूस बोलते हैं जिसको।
0: बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है?
1: वेटिकन सिटी।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप कह रहे हैं मैं थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हूँ, आप तो पूरी नॉलेज रखते हैं।
1: नहीं सर, जीके जनरल नॉलेज में अगर हम एक समुंदर है वो उसमें से एक नहीं भी लो
0: लेकिन
1: है,
0: आप,
1: वो
0: आप बहुत उस हिसाब से बहुत छोटी छोटी चीज माइनूटली आपको पता है, वो मेरे को बहुत अच्छा है क्योंकि वेटिकन सिटी ये कईयों को नहीं पता होगा। चलिए मैं आपसे अब ये 4 सवाल आपने बिल्कुल सही दिए हैं, मैं 5वां सवाल आपसे पूछ रहा हूँ।
1: जी।
0: और इजी पूछूं या थोड़ा डिफिकल्ट पूछूं?
1: सर आपका जो मन करे वो पूछिए, मैं बैठता होगा तो।
0: चलिए चलिए चलिए चलिए,
1: आप इजी, आपको मैं बोल दूं आप इजी पूछिए और आप इजी पूछे मेरे को ना।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो है देखो अगर आपको पता होगा तो आपके लिए तो इजी है, ठीक है। तो ये होता ही है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
1: ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता
0: है। बहुत बढ़िया, आप रेनबो जीनियस हमारे बन गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो।
1: धन्यवाद।
0: तो आप ये फर्स्ट टाइम है या पहले भी आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं?
1: इस साल में मैं 18वीं बार बना हूं।
0: क्या बात है, साल में 18वीं बार।
1: जी साल
0: तो ये मतलब इसको मिला गया 19वीं बार हो गया होगा?
1: नहीं ये 18वीं बार
0: है। चलो बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज वगैरह हैं?
1: बस अभी तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं।
0: क्या बात है। और रेनबो वगैरह सुनते हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: रेनबो के कौन कौन से प्रोग्राम्स आप सुनते हैं?
1: सुबह 7 से 8 तक।
0: अच्छा 7 से 8 कौन सा? गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।
1: जी जी
0: ओके। और इसके अलावा
1: ये प्रोग्राम आपका मैं लगभग सुन

0: 2012 से 2017 तक, और उसके बाद में अभी 2 साल से स्टार्ट किया दोबारा से।
1: अच्छा, तो रेनबो के और कौन से प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगते हैं?
0: सर मैं लगभग नॉलेज के लिए चलाता हूँ।
1: अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उमेश जी, आपको हमारे बेस्ट विशेज हैं, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए, और बहुत बहुत मुबारक रेनबो जीनियस 18वीं बार। आप हम सोचेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि आप उन 100 बार आप बने, पूरा 100 अपना कंप्लीट करें।
0: जी, कोशिश करेंगे।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे उमेश जी भिवानी से, और ये भी हमारे रेनबो जीनियस बने हैं और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और हर क्षेत्र में। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अब हमारा भी जो है ना समय आगे आगे बढ़ता जा रहा है, और समय 4:53 हो चुके हैं। अगर अभी भी हमारी फोन लाइंस ओपन है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 2342-1080। फिलहाल आपके लिए ये क्यूट प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद आपसे बातें चलती रहेंगी।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर। और दोस्तों

0: कुछ नहीं है
1: सर, 20 मिनट नजर आ रही है। चलिए कोई नहीं, अपना नाम बताएं।
0: जी मैं संजय बात कर रहा हूँ।
1: संजय आप रेडी हैं?
0: जी सर मैं रेडी हूँ।
1: हाँ मैं आपसे 5 सवाल पूछता हूँ, सही जवाब दिया तो आप रेनबो जीनियस बन जाएंगे।
0: जी सर जी मुझे रूल सारा पता है।
1: जी चार मीनार कहाँ पर है?
0: जी हैदराबाद में।
1: अच्छा और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
0: दयानंद सरस्वती जी।
1: नहीं नहीं राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज
0: ब्रह्म समाज
1: हाँ जी
0: समाज के तो दयानंद सरस्वती जी थे सर। राजा राम मोहन रॉय सॉरी सॉरी यस यस सर आर्य समाज के थे वो दयानंद सरस्वती। कोई नहीं सर
1: मुझे आपने डाउट में डाल दिया है। मेरी जनरल नॉलेज थोड़ी सी मेरे अपने जनरल नॉलेज पे मेरे को डाउट हो गया था। कोई नहीं अगला मैं सवाल पूछ रहा हूँ, समय बहुत कम है। और तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है?
0: एक मई।
1: हेलो
0: यस सर एक मई।
1: एक मई ठीक है। और जो गिर पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं?
0: गिर की पहाड़ियां गुजरात में।
1: बहुत बढ़िया आप जो है बन गए हैं रेनबो जीनियस। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ आज बहुत सारे जीनियस थे और थैंक यू सो मच। और अब वीर दमन को दीजिए इजाजत, अगला प्रोग्राम कोमल आपके साथ लेकर रहेंगी। जी हाँ गुड सिटी लाइट्स लेकर। अब वीर दमन को दीजिए इजाजत, मिलूंगा अगले सफर पर। तब तक ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिए। बाय एंड टेक केयर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्तों का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छुपाएं। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना आवश्यक है। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकालने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। असम में जनगणना 2027

0: इसके पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.censet.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित जनगणना कर्मी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक गृह सूचीकरण अभियान और आवास जनगणना का संचालन करेंगे। इस दौरान पोर्टल पर भी दी गई जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान देश से 100 से अधिक जीआई पंजीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादकों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश के कोयला उत्पादन में जुलाई 2025 के मुकाबले जुलाई 2026 में 7.51% की बढ़ोतरी हुई है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जुलाई में देश में कुल कोयला उत्पादन 69.75 मिलियन टन रहा। जुलाई 2026 में कोयले की आपूर्ति जुलाई 2025 के मुकाबले 17.34% अधिक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने बताया कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कांगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और ये देश के इतिहास में सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बन गया है। संगठन के अनुसार 30 जुलाई तक इबोला के 3,605 पुष्ट मामले और 1,587 मौतें दर्ज की गई हैं। केरलम में मूसलाधार वर्षा से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं की 77।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: Mr. Modi added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event. The participants include governors of states, chief ministers of states, My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. President Draupadi Murmu flagged off a Run PBG soldier's horn at a ceremony held at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. Governor

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰেলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে সৰফিৰোজী। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छिपाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।

0: नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देशभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राज्य भर में कल से अब तक वर्षा संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। 5,700 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उबर ना पाने के कारण श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news, read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking at the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch marks the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
2: Nasha केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: More than 1 crore youths from 28,000 locations across the country participated in the event. The participants included My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity, and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee MPC report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. The report report attributed the improved outlook.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচকঃ পুনীত ত্রিপাঠী। আদৌ মুখ্য বার্তাঃ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশস্য যুবনাঃ শারীরিকরূপেণ স্বস্থাঃ মানসিকরূপেণ চ সুদৃঢ়াঃ ভবন্তুইতি প্রার্থয়ত। বিকশিত ভারতস্য লক্ষ্যম সাধয়িতুম বিকশিত ভারত সংকল্পাভিযানায় নশা মুক্তি যুবা ইতি কার্যক্রমমপি উদ্ঘাটিতবান। কেরল রাজ্যে প্রচণ্ড বৃষ্টিঃ নিরন্তরম বিনাশম জনয়তি, অষ্টজনাঃ মৃতাঃ ইত্যুচ্যতে, সহস্রশঃ জনাঃ সাহায্য শিবিরান প্রতি স্থানান্তরিতাশ্চ। असम राज्ये 27,000+ जनगणनार्थं स्वगणना समारब्धा। गृहसूचीकरण प्रक्रियायाः प्राक् अगस्त मासस्य 16 दिनांक पर्यन्तं अन्तर्जाल सुविधा उद्घाटिता अस्ति। इंडोनेशिया देशे मदुरा द्वीपे नौकायानस्य अग्निप्रकोपात् 5 जनाः मृताः, 41 जनाश्च लुप्ताः सन्ति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां तन्वी शर्मा इत्येषा ताइपे ओपन इति क्रीडायां प्रथमवारं BWF वर्ल्ड टूर इति उपाधिं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारतं यावत् विकसित भारतं भवितुं प्रावर्तते तदा राष्ट्रस्य युवकाः शारीरिकरूपेण स्वस्थाः मानसिकरूपेण सुदृढाः आत्मविश्वासयुक्ताश्च भवेयुः। अद्य नवदिल्ल्याम् आभासीयमाध्यमेन नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्पाभियानस्य उद्घाटने भाषणं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् युवजनाः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरीभूय स्वस्थ जीवनशैलीं स्वीकर्तुं शक्नुवन्त्वीति।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: श्रीमोदी इत्ययम् अवदत् यत् अयम् उपक्रमः मादकद्रव्याणां दुरुपयोगं विरुध्य शतसप्ताहस्य राष्ट्रव्यापि जनसहभाग अभियानस्य आरम्भं करिष्यतीति। श्रीमोदी अवदत् यत् मादकद्रव्याणां व्यसनं जनान् स्वलक्ष्यात् विचलितं करोति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च

0: शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरलम में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking at the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch marks the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance use. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event. The participants included My Bharat and National Service Scheme volunteers as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainty. The report attributed the improved outlook to a broad-based pickup in high-frequency indicators during the April-June quarter. SBI Research also noted that the global environment remains uncertain amid the West Asia crisis, but India's domestic economy has shown resilience. India's coal production has witnessed a growth of 7.51% in July 2026 compared to the same period last year. Overall, coal production in the country during July this year has reached 69.75 million tons as per provisional data. Coal dispatch during the last month showed a growth of 17.34% year-on-year in July. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin

0: শান্তনু ভট্টাচাৰ্যৰ কণ্ঠৰ ভজন্তি শুনিলে। ভজনৰ অনুষ্ঠানটি ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছত 8:45 চামাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
2: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जनभागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
5: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
2: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
6: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
7: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
2: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
8: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
9: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
7: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
2: अंत

0: रागपुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना के बोल हैं बरनीन जाए सखी जो झपताल में निबद्ध है। द्रुत रचना के बोल हैं बेरी बसंत अब आयोरी जो त्रिताल में है।
1: दैट वॉज अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय श्री सुधाकर देवले इन रागपुरिया। श्री देवले विल नाउ प्रेजेंट राग बसंती केदार सेट टू झपताल विद द लिरिक्स बरनीन जाय सखी, सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स बेरी बसंत अब आयोरी।

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस धनी में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारे दानी दीम।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू द वोकल परफॉर्मेंस ऑफ श्री सुधाकर देवले जी इन राग बसंती केदार। श्री सुधाकर देवले इज कंक्लूडिंग हिज प्रोग्राम विद तराना इन राग हंस ध्वनि सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स दारा दिम तदारे दानी दिम।

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। Accompanying him were Pramod Borgaonkar on the harmonium and Ulhas Rajhans on the tabla. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा

0: संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं बीएमजेड, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
0: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश